0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I know this is going to sound really old school, romantic और काफी mushy भी, but I will tell you this, okay? कि अगर आप एक बंदे हो और आप सोच रहे हो what are the things that will make my crush or my girlfriend or my wife feel really special, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो naughty हो in nature, but something very sweet, लेकिन जो हर बंदी को universally पसंद है. Let me tell you, the answer is holding hands. I feel like, and this is true for every woman I have spoken to, जब कोई बंदा unexpectedly हमारा हाथ पकड़ता है, वो सड़क क्रॉस करने के लिए हो, हम डिनर खा रहे टेबल के नीचे से हमारा हाथ पकड़ ले, जस्ट दिस स्वीट रोमांटिक सिंपल जेस्चर हाथ पकड़ने का, विच इज आई थिंक वी डोंट डू इट इनफ विद आवर पार्टनर्स, ये इतना खूबसूरत है. आई रिमेम्बर मेरे हर रिलेशनशिप में, इफ देर इज वन थिंग आई रिकॉल बहुत क्लियरली, इट इज एवरी सिंगल टाइम मेरे किसी भी बॉयफ्रेंड ने मेरा प्यार से रोमांटिक.
2: तेरी मम्मी की जय,

लटीना चिकनी चमेली कट कटरीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में एक इंटर्न हो आप और आपको प्यार हो जाता है आपकी बॉस से, जिसकी शादी होने वाली है 2 महीने के बाद. आप उसकी शादी अटेंड करते हो और शादी वाले दिन आप अपनी बॉस को, यू गो डाउन ऑन योर नीज एंड टेल हर दैट यू रियली लव हर, और वो ये शादी छोड़ के आपसे शादी कर ले. अगर आपने ऐसे कांड करे हैं तो आप इसका कन्फेशन करोगे कहाँ, ये बताओ मुझे.
2: सीक्रेट बॉक्स.
1: The answer is, that is right, Secret Box में. यहाँ पर with me, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. Hit me up on Insta या FB, I'll be happy to hear all of your confessions. और मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर, नॉटी बॉय.
3: हेलो रोशी,
1: क्या हाल चाल है?
3: एकदम बढ़िया.
1: मेरा तो बिल्कुल ठीक है. मैंने आपकी जब कन्फेशन सुनी ना इंस्टाग्राम पर, तो मतलब थोड़ी देर के लिए तो आई वॉज लाइक, दिस हैज टू बी अ पंजाबी पर्सन. तो पहले तो मुझे बता दो आप पंजाबी हो कि नहीं.
3: बिल्कुल प्योर पंजाबी.
1: प्योर पंजाबी, तो मुझे आपका कन्फेशन अब बिल्कुल ही समझ में आ रहा है. लेकिन अब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ कि क्या है आपकी कन्फेशन.
3: तेरे साथ तो नहीं बिठा रखी तूने.
1: मैंने किसी को
3: किसी को सुनाने के लिए.
1: आई मीन अब तो ये अखा इंडिया सुनेगा, बट आई एम जस्ट होपिंग दैट इज नॉट योर गर्लफ्रेंड हु. बट वैसे भी आप मेरे मिस्ट्री कॉलर हो ना, सो
3: अखा इंडिया भला सुन ले, लेकिन वो नहीं, बंदी नहीं सुननी चाहिए.
1: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, प्रॉमिस बंदी. अगर आपको ये आवाज जानी पहचानी लग रही है तो अपना रेडियो स्टेशन बंद कर दो, ठीक है अब. अच्छा आप बताओ कि किया क्या आपने जिंदगी में.
3: जिंदगी में क्या यार, अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है. अभी हमारा, अभी मेरा, मेरी बंदी के साथ लास्ट दो तीन साल से रिलेशन चल रहा था. और अभी वो लास्ट 6 महीने से मेरे साथ बहुत ज्यादा सीरियस हुई थी, क्योंकि आगे उसकी फैमिली में भी उसने मेरे साथ डिस्कस कर लिया था. तो उसने कहा था कि आगे बात और आगे ले जानी है, तो इस बात को लेके आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी फिटनेस को लेके, क्योंकि मेरे को ना ऑलरेडी पंजाबी फैमिली से हूँ, खाने पीने का बहुत शौक है. मुंह हर टाइम, अभी भी मुंह चल रहा है मेरा. शायद आवाज से पता लग रहा होगा. तो तो हमेशा ये उसको प्रॉब्लम होता था कि यार तुम्हें जब देखूं मैं, तुम खाते पीते मिलते हो तो ये दिक्कत वाले काम है. तो आगे से आपको थोड़ा सा हेल्थ को, फिटनेस को ध्यान देना पड़ेगा. क्या था, बंदी बोल रही है तो ना तो करने का ही नहीं था.
1: Correct, exactly,
3: हाँ बिल्कुल करेगा. हाँ, बिल्कुल करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा. और साला मैं खुद ही खा खा के परेशान हो चुका हूँ. उसको तो ऐसे शो कर दिया. हाँ हाँ, साथ जाके जिम की फीस बिल्कुल पे करवा दी, सब कुछ करवा दिया.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4 आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: गुलाबी साड़ी अने लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
4: टी सीरीज प्रेजेंट द माल 4।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी,
4: starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

मेरी एक मजबूरी थी बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू गेट नॉटी विद हिम बिफोर ही वेंट टू थाईलैंड एंड आई वाज लाइक एक सेकंड क्या तेरी मजबूरी थी टू गेट डाउन एंड डर्टी विद योर एक्स बिफोर ही वेंट टू थाईलैंड मैं काइंड ऑफ समझी नहीं एंड मेरी बेस्टी ने मुझे समझाया कि इससे पहले कि मेरा एक्स थाईलैंड जाकर कोई डिजीज पिक कर ले बाई गेटिंग नॉटी विद समबडी एल्स मैंने सोचा आई शुड जस्ट डू अस अ फेवर एंड जस्ट गेट नॉटी बिफोर ही गोज टू थाईलैंड यू नो क्योंकि अगर वो डिजीज वापस आया तो आई विल नेवर बी एबल टू हैव अ थ्रोबैक थर्सडे विद हिम एंड आई वाज लाइक माय डियरेस्ट डार्लिंग इज बेस्टी तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की तुरंत जरूरत है और अगर मेरी बेस्टी की तरह आप भी बहाने ढूंढते रहते हो टू गेट नॉटी विद योर एक्स बिकॉज यू आर सच अ नॉटी पर्सन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड मे बी आई कैन हुक यू अप विद माई बेस्टी मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम के स्पेलिंग है ROCHIE सो गो अहेड डार्लिंग डू व्हाट यू नीड टू डू बट व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में दो खास चीजें थी. नंबर वन, उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, वेरी उम्दा. नंबर टू, उसे मेरे पैसों पर ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, नॉट सो उम्दा. पर उसे ना जब व्हेन वी वर डेटिंग ईच अदर ट्रैवल आइटनरी बनाई और ऐसे मुझे पकड़ा दी कि ये ले रोशी, जिस दिन तेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे हाउ अबाउट वी गो टू फ्रांस एंड लॉयर वैली. एंड आई वॉज लाइक, एक तो ना मेरे पास जब ज्यादा पैसे आएंगे मैं अकेले चले जाऊंगी, बट ये लॉयर वैली है क्या चीज, ये तो देखें. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये फ्रांस में जो लॉयर LAWYER नहीं LOIRE, लॉयर वैली जो है वो फ्रांस में है. एंड इट्स वेरी वेरी फेमस क्योंकि वहां पर बहुत अमेजिंग ड्राई वाइट वाइन्स बनती हैं. सो इफ यू आर समवन हु रियली एंजॉयज योर ड्रिंक एंड सो डज योर पार्टनर, मे बी आपको फ्रांस की इस जगह जाना चाहिए, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा शैटोज हैं, विच मीन्स कि बहुत बड़े कासल्स, बहुत लग्जूरियस होम्स, बहुत इनक्रेडिबल इनसेनली गॉर्जियस कॉटेजेस. इन सब को मिलाकर ये 300 प्रॉपर्टीज बनती हैं. और इस वैली के बीच में से जाता है एक बहुत ही खूबसूरत रिवर विच इज़ कॉल्ड द कॉसन रिवर. अब इस कॉसन रिवर पर अगर आप हाउस बोट लेकर रहना चाहते हो और इस वैली के फील्स लेना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल. मैंने जब इसकी फोटोज देखी थी ना, मुझे इस जगह से प्यार हो गया था. आई वॉज लाइक, यार जिस दिन मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे ना, यहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज जहाँ तक नज़र जाती है विनयार्ड्स ही विनयार्ड्स, ग्रीनरी ही ग्रीनरी. इट्स अनदर थिंग दैट आई डोंट ड्रिंक एंड आई डोंट हैव अ पार्टनर. और फ्रांस जैसी जगह अकेले थोड़ी जाते हैं यार. तो अगर आप भी मेरी तरह ऐसे सिंगल हो और आपके पास बहुत पैसे हैं फ्रांस जाने के लिए, जो फ्रेंकली मेरे पास अभी नहीं है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: Listener mein back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये जालिम ज़माना आपके दिल के साथ कितना खेलता है, but I am not interested in that. I'm interested in your brain.
2: Love game.
1: Ooh, time हो गया है for the love game और मेरे साथ love game खेलने के लिए is this very spectacular person जिनका insta handle है different boy panchal. Hello different boy panchal.
3: Hello Mitchy.
1: What's up?
3: कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया. आप कैसे चल रहे हैं सबको?
1: हाँ बिल्कुल बढ़िया. बट आप बताओ आपका नाम क्या है? डिफरेंट बॉय तो नहीं रख सकते आपके माँ बाप आपका नाम?
3: नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा नाम रखा है. मेरा नाम अनुज है.
1: अनुज, हाय, सो नाइस टू टॉक टू यू.
3: थैंक यू सो मच.
1: कौन से कोने से इस खूबसूरत कंट्री के आप मुझसे बात कर रहे हो?
3: मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ.
1: ओह वंडरफुल. कितने साल के हो आप?
3: मैं अहमदाबाद में अभी रिसेंटली 3 साल से ही रह रहा हूँ.
1: अच्छा, ओह राजस्थान में कहाँ से हो आप?
3: जयपुर.
1: हाउ वंडरफुल. आप लव गेम खेलने के लिए तैयार हो?
3: ओके.
1: अनुज का सवाल नंबर 1 है, विराट कोहली की किस बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी हुई है?
3: अनुष्का शर्मा.
1: ओह वेरी नाइस. ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको सब कुछ पता है. सवाल नंबर 2, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के लिए एक बहुत आइकॉनिक मॉन्यूमेंट बनाया था, वो मॉन्यूमेंट का नाम और वो कहाँ है वो बताइए.
3: वो ताजमहल था और वो आगरा में है.
1: अरे वेल डन चैंपियन. आपका तीसरा सवाल है, सैफ अली खान की कितनी बार शादी हुई है और अगर एक से ज्यादा बार शादी हुई है तो उनकी पत्नियों के नाम बताएं.
3: उनकी 2 बार शादी हुई है, एक बार अमृता सिंह से और दूसरी बार अपने करीना.
1: ओह माय गॉड, यू आर टोटली
2: रोशिफाइड.
1: क्या आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में भी इतने ही सटीक हैं जितने मेरे इस लव गेम में थे?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैम काम के लिए बिल्कुल ईमानदार है
1: और प्यार के लिए?
3: प्यार के लिए भी उतने ईमानदार है.
1: तो आप क्या चीज की तलाश कर रहे हैं कि अगर ये क्वालिटी मिल गई मुझे एक लड़की में तो मैं अपना सब कुछ सरेंडर कर दूंगा इन लव?
3: लविंग हो, ठीक है, और लविंग हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, वो भी समझे चीजों को, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आई थिंक मैं किसी को समझ रहा हूँ तो वो भी मुझे समझे. सो अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस दैट्स इट.
1: ओह दैट इज सो स्वीट. द नेक्स्ट टाइम आई टॉक टू यू आई होप यू मेट समबडी हु इज एग्जैक्टली दिस अडोरेबल. और जितने अच्छे और सक्सेसफुल आप मेरे लव गेम में थे उतने ही सक्सेसफुल आप जिंदगी में हो. दैट्स ऑल आई प्रे फॉर यू अनुज.
3: थैंक यू सो मच.
1: टेक केयर डार्लिंग.
3: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.
1: थैंक यू.
3: इट्स वेरी फैंटास्टिक टू टॉक विद यू.
1: थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट. टेक केयर, बाय. अगर आप भी अनुज की तरह ऐसे मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हैं देन

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bhakshi Baba ki
1: jai! Oh my little Bhaks, you are so cute. Jab date par jaate ho and you get carried away with all that drinking and getting naughty, ghar jaane se pehle you notice that, oops, I have a love bite. Ab ise kaise chupayenge? Do tarike hain, my love. You can opt for any one of the two. Ek chamach lo, use freezer mein dalo. Us chamach ko apni love bite par apply karo. And that's going to minimize the impact of that love bite. Number two, अगर ऐसी जगह है जहां पर बैंडेड लगा के यू कैन गेट अवे विद इट, देन आई थिंक यू शुड टोटली ट्राई दैट. अरे बेटा ये क्या हो गया? अरे उस दिन क्या हुआ ना मम्मा, चलते चलते गर्दन पर इतनी जोर से लग गया, एक बैंडेड लगानी पड़ी. इट साउंड्स अनबिलीवेबल बट हो सकता है दैट योर मम्मा माइट एक्चुअली बाय इट फॉर यू. एंड नंबर थ्री बोनस पॉइंट, अगर गर्मी में तप रहे हो तो भी एक स्कार्फ या दुपट्टा अपने गले के आसपास बांध लो एंड कॉल इट स्टाइल. इफ योर पेरेंट्स बिलीव इट देन दे रियली लव यू, डोंट दे? एंड फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स सुनते रहो रोशी बाबा को. यू विल नेवर गो अवे डिससैटिस्फाइड. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So hit me up on the gram या Facebook, and while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रेड फ्लैग नहीं, पूरा का पूरा रेड कार्पेट है जब आप अपनी डेट के साथ स्पेशली पहली बार एक रेस्टोरेंट पर जा रहे हो एंड दैट पर्सन इज रूड टू वेटर्स. ये मैंने बहुत एक्चुअली मतलब आसानी से सीख जाना चाहिए था, बट क्योंकि मैं डेटिंग के केस में काफी स्लो लर्नर रही हूँ, मैंने ये बहुत धीरे रियलाइज किया कि जो इंसान एक वेटर को ठीक से ट्रीट नहीं करता है, ऐसे लाइक ए इधर आना, ए बिल्ला, ए ऊ, दैट इज अ पर्सन जो आपको भी इवेंचुअली इन लाइफ ठीक से नहीं ट्रीट करेगा. बिकॉज दीज आर पीपल जिन्हें ऐसा लगता है कि दे आर सो क्लास एंड स्टेटस कॉन्शियस दैट दे फील कि अगर कोई उनके स्टेटस या क्लास को मैच नहीं कर रहा, दे हैव द एंटाइटलमेंट टू ट्रीट दोज पीपल वेरी पुअरली. तो एक ऐसा टाइम आएगा आपके रिलेशनशिप में जब इस इंसान का बहुत ही डोरमेंट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इवन विद यू उभर के बाहर आएगा और फिर वो एक लाल फ्लैग से एक लाल लहंगा बन जाएगा जिसे वो चाहेगा कि आप अपनी शादी पर पहनो. बट नो, आप ऐसा नहीं करोगे. इट्स अ गर्ल और अ गाय इफ दे आर रूड टू द वेटिंग स्टाफ, दैट्स अ बिग नो नो. तो अब आप मुझे बताओ, सिंस इट्स योर टर्न टू टॉक, कि जब आप एक डेट पर गए, एवरीथिंग वॉज ग्रेट अबाउट दिस पर्सन, लेकिन देयर बिहेवियर विद द वेटिंग स्टाफ वॉज टेरेबल, और अगर ऐसा हुआ है देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ऑफिस में एक इंटर्न हो आप और आपको प्यार हो जाता है आपकी बॉस से, जिसकी शादी होनी शादी होने वाली है 2 महीने के बाद. आप उसकी शादी अटेंड करते हो और शादी वाले दिन आप अपनी बॉस को यू गो डाउन ऑन योर नीज एंड टेल हर दैट यू रियली लव हर और वो ये शादी छोड़ के आपसे शादी कर ले. अगर आपने ऐसे कांड करे हैं तो आप इसका कन्फेशन करोगे कहाँ, ये बताओ मुझे.
0: सीक्रेट बॉक्स.
1: The answer is, that is right, Secret Box में. यहाँ पर with me, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. Hit me up on Insta या FB, I'll be happy to hear all of your confessions. और मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर, नॉटी बॉय.
2: हेलो रोशी,
1: क्या हाल चाल है?
2: एकदम बढ़िया.
1: मेरा तो बिल्कुल ठीक है. मैंने आपकी जब कन्फेशन सुनी ना इंस्टाग्राम पर, तो मतलब थोड़ी देर के लिए तो आई वॉज लाइक, दिस हैज टू बी अ पंजाबी पर्सन. तो पहले तो मुझे बता दो, आप पंजाबी हो कि नहीं?
2: बिल्कुल प्योर पंजाबी.
1: प्योर पंजाबी. तो मुझे आपका कन्फेशन अब बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ कि क्या है आपकी कन्फेशन.
2: तेरे साथ तो नहीं बिठा रखी तूने?
1: मैंने किसी को
2: किसी को सुनाने के लिए,
1: आई मीन अब तो ये अखा इंडिया सुनेगा, बट आई एम जस्ट होपिंग दैट इज नॉट योर गर्लफ्रेंड हु इज, बट वैसे भी आप मेरे मिस्ट्री कॉलर हो ना, सो
2: अखा इंडिया भला सुन लो, लेकिन वो नहीं, बंदी नहीं सुननी चाहिए.
1: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, प्रॉमिस बंदी. अगर आप, आपको ये आवाज जानी पहचानी लग रही है तो अपना रेडियो स्टेशन बंद कर दो, ठीक है अब. अच्छा आप बताओ कि किया क्या आपने जिंदगी में?
2: जिंदगी में क्या यार, अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है.
1: हाँ.
2: अभी हमारा, अभी मेरा मेरी बंदी के साथ लास्ट दो तीन साल से रिलेशन चल रहा था. हाँ. और अभी वो लास्ट 6 महीने से मेरे साथ बहुत ज्यादा सीरियस हुई थी, क्योंकि आगे उसकी फैमिली में भी उसने मेरे साथ डिस्कस कर लिया था, तो उसने कहा था कि आगे बात और आगे ले जानी है, तो हाँ. इस बात को लेके आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी फिटनेस हाँ. को लेके, क्योंकि मेरे को ना ऑलरेडी पंजाबी फैमिली से हूँ, खाने पीने का बहुत शौक है.
1: हाँ.
2: मुंह हर टाइम, अभी भी मुंह चल रहा है मेरा.
1: हाँ.
2: शायद आवाज से पता लग रहा होगा.
1: हाँ, तो हमेशा मुंह सुनाई दे रहे मुझे.
2: तो हमेशा ये उसको प्रॉब्लम होता था कि यार तुम्हें जब देखूं मैं, तुम खाते पीते मिलते हो तो ये दिक्कत वाले काम है, तो आगे से आपको थोड़ा सा हेल्थ को फिटनेस को ध्यान देना पड़ेगा. अब क्या था, बंदी बोल रही है तो ना तो करने का ही नहीं था.
1: करेक्ट, एग्जैक्टली.
2: हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा. और साला मैं खुद ही खा खा के परेशान हो चुका हूँ, उसको तो ऐसे शो कर दिया. हाँ हाँ साथ जाके जिम की फीस बिल्कुल पे करवा दी, सब कुछ करवा दिया. अब अगली की तसल्ली शुरू हो चुकी है. लास्ट 4 महीने, 4-5 महीने हो गए इस बात को. तो अब भाई डाइटिंग पे बंदा स्टार्ट हो गया है. डेट पे जाता है तो डाइटिंग करता है. उसके साथ कहीं भी डेट पे जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसके घर जा रहा है या वो घर आ रही है, तो उसके सामने बिल्कुल एज अ डाइटिशियन की पूरी डाइट फॉलो कर रहा है. लेकिन अगली को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि सारा जहाँ पे पहले 2 पराठे खा रहा था वहां बंदे के 4 पराठे शुरू हो चुके हैं. जहाँ पहले 2 कटोरी दही था वो 4 कटोरी दही में बदल चुका है. अब उसके साथ जाके मैकडी में जहाँ हाफ बर्गर खाना है, ये नहीं पता कि उसको घर ड्रॉप करने के बाद दोबारा मैकडी जाके 3 बर्गर खा रहा है बंदा. अब और कई बार फंसती कहाँ थी बात, वो हमेशा कहती थी एक बार मेरे सामने वेट कर दे, एक बार मेरे सामने हर 10 दिन में तेरा वेट चेक करना है. बस वो हमेशा मशीन खराब, हमेशा जिम की मशीन खराब दिखाई है उसको. हमेशा उसने एक मशीन ला के रखी, वो खराब दिखाई है, उसमें से सेल निकाल के हमेशा रखता था. क्योंकि अगर वहां वेट बढ़ा हुआ आ गया या घटा हुआ नहीं आया तो मुझे पता उसने कितनी गालियां देनी है. एक दो बार मैं फंसा जरूर. वो घर पे आई और सर्वेंट ने उसको बोलने लगा कि भैया अभी नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन सचमुच किस्मत अच्छी थी कि कैमरे में पहले ही देख लिया कि कौन आया है. सारा किचन साफ करवाया उसे, डाइनिंग टेबल से सारा ब्रेकफास्ट हटवाया. इस तरीके से तो माने के लिए गाड़ी से अलग, गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई चिप्स या कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक, तो हमेशा कोई ना कोई कैन पड़ा रहता था. वो सारा छुपा के अब डिक्की में रखता हूँ. जैसे वो उसको सारा उसको ड्रॉप करता हूँ, उसी टाइम निकाल के चिप्स शुरू हो जाता है. ये नहीं पता कहाँ 80 से वेट शुरू हुआ था, 90 पे आ चुका है. और उसको कहता हूँ 70 पे फॉलो कर रखा, 70-71 पे वेट चल रहा है इस टाइम मेरा.
1: और आपकी गर्लफ्रेंड ऑब्वियसली प्यार में इतनी अंधी है,
2: वो बेचारी प्यार में डूबी पड़ी है, उसको बस इतनी तसल्ली है कि उसके सामने खाता पीता नहीं हूँ. बस कभी कभार मेरे फ्रेंड सर्कल में पूछती रहती है, और वो अपने भाई लोग हैं उनसे उसको पकड़ में नहीं आ सकता कभी मैं.
1: यार आप तो बहुत ही कमाल के बंदे निकले हो. आई होप नोबडी इन दिस वर्ल्ड टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बट क्योंकि आप मेरे इतने खास इंसान हो, मेरे मिस्ट्री कॉलर हो, एक रोशन हो, इसलिए मैं आपको रोशिफाई करने वाली, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है. वैसे आपने काम कोई ठीक नहीं किया.
3: You've been roshified.
1: थैंक यू सो मच मिस्ट्री कॉलर. अब आपने कह ही दिया तो मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपको 4 बर्गर्स भिजवा देती हूँ. ठीक है अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी. आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला। सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला। मिर्ची।

जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

अगली बार आई एम टेकिंग माई पेपरमिंट चाय विद मी जब भी मैं अपनी बेस्टी के साथ वेकेशन पर जा रही हूँ. भाई साहब लाइक वो सारा दिन फोन पर वीडियोस चेकआउट कर रही होती है और ईयरफोन्स में वो विश्वास नहीं रखती है. बाय द एंड ऑफ इट उसकी पर पर पर पर सुनते सुनते जो भी वो वीडियो पर देख रही थी इट गेव मी अ हेडेक. एंड दैट्स व्हेन मैंने ऋषिकेश में जाकर अपने लिए पेपरमिंट चाय खरीदी. रोज रात को सोने से पहले मैं पेपरमिंट चाय पीती थी बिकॉज दैट वॉज दी ओनली वे टू फिक्स माई हेडेक. तो मैं एलोपैथी में विश्वास नहीं रखती हूँ इसीलिए मैं बहुत नेचुरोपैथी यूज करती हूँ. अगर आपके भी रिलेशनशिप में इट गिव्स यू मोर हेडेक्स एंड हार्ट बर्न्स देन एनीथिंग एल्स और आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते जैसे मैं अपनी बेस्टी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, पेपरमिंट इज द आंसर. अब आप इसे एसेंशियल ऑयल की तरह यूज करो, पेपरमिंट के साबुन से नहाओ या प्योर पेपरमिंट की चाय पियो. इट्स ऑल गोइंग टू वर्क फॉर यू. इट्स गोइंग टू कीप द हेडेक अवे. इसे ट्राई करके देखो और फिर भी अगर रिलेशनशिप आपको हेडेक दे रहा है देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप. बातें करते हैं इसके बारे में. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. La virba la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना हम। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख में जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप हमें
3: रख लो,
2: ये बीच में रख लो हमें। अरे यार पब्लिक को यार,
3: तो यार ये आपको पहले सोने दें ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़ में गए।
3: आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। Visit viranijewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

कपूर खानदान की बहू हैं, ऋषि कपूर की वाइफ हैं, रणबीर कपूर की मम्मा हैं, आलिया भट्ट की सास हैं, राहा कपूर की दादी हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी मैं बात कर रही हूँ नीतू सिंह की। उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमको पता है, वो शायद इसीलिए क्योंकि जब वो अपने करियर की पीक पे थी उन्होंने शादी कर ली और कपूर खानदान की बहू बन गई, अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया। वैसे इनका असली नाम है हरनीत कौर। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो बेबी सोनिया सिंह नाम से किया, उसके बाद बड़ी होकर जब फिल्में करने लगी तो नीतू सिंह के नाम से। आज इन्हीं के बारे में करेंगे बातें, ऑफ कोर्स इनके गाने भी सुनेंगे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हाँ
3: बोलो कौन।
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल कौन रहा है।
4: बोल कौन रहे हो, कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो,
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार।
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर।
3: कब आया था, कब घुसा अंदर।
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: तो कहाँ से रहा है, तो नहीं हो गया है।
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया।
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: सीवर में मरा रहा है तू,
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने।
4: अच्छा है, सीवर साफ होने का एक काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो।
4: कुकड़ू को
5: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
3: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
1: क्या बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा
1: मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
7: हेलो बेटा नवनीत।
3: आप कौन।
7: पापा कहाँ हैं।
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
7: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या।
3: लेकिन आपको काम क्या है।
7: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था।
7: चुप कर। पापा ने कहा था, मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल।
7: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट।
7: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
7: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने।
3: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं।
7: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
7: लगी। अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी।
7: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं।
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
7: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
7: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं।
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को।
7: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
8: तेरा क्या होगा कालिया।
9: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई नीतू सिंह बेसिकली दिल्ली की हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब वो 5 साल की थी उनके पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे आ गए थे। उनकी मदर राजी सिंह वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उन्होंने काफी कोशिश भी की, फिल्मों में कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया और साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए भी एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच जब नीतू सिंह जी के फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नीतू सिंह की मम्मा ने और एक्टिवली उनके लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। एज अ चाइल्ड एक्टर नीतू सिंह ने काफी फिल्मों में काम किया है, करेंगे उसके बारे में भी बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

भाई नीतू सिंह जब 7-8 साल की थी उनको वैजयंती माला जी ने नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैजयंती माला जी का एक डांस स्कूल था जिसमें नीतू सिंह एज अ चाइल्ड जाती थी। उन दिनों वैजयंती माला जी की एक फिल्म के लिए चाइल्ड एक्टर को ढूंढा जा रहा था। ये फिल्म थी 1966 की सूरज, जिसमें वो गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वो वाली फिल्म। तो इस रोल के लिए नीतू सिंह को, जो तब बेबी सोनिया थी, साइन कर लिया गया। फिर लेट 60s में काफी फिल्मों में इन्होंने एज चाइल्ड एक्टर काम किया। 10 लाख, 2 दूनी 4, वारिस, घर घर की कहानी, पवित्र पापी एंड सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारा रोल इनका दो कलियां फिल्म में, जहां पे इन्होंने दो जुड़वा बहनों का रोल किया था। इतनी अडोरेबल है ना नीतू सिंह उसमें, इतनी अडोरेबल, सदके वारी जाऊं। मतलब वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है इन्हीं की वजह से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: नीतू सिंह जब सिर्फ 8 साल की थी तब उनकी पहली फिल्म आई थी एज अ चाइल्ड एक्टर।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी बॉम्बे में वो वैजयंती माला जी के डांसिंग स्कूल में थी जहाँ पे वैजयंती माला जी ने उनको नोटिस किया और वो 1966 की फिल्म सूरज में कास्ट हुई। उसके बाद काफी फिल्में की इन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस दो कलियां। 1970 तक ये एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती रही बाय द नेम ऑफ बेबी सोनिया। उसके बाद इनकी फैमिली फिर 3 साल के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई बॉम्बे से। ओरिजिनली वो दिल्ली से ही पहले आए थे। जब नीतू सिंह 5 साल की थी तब वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। एंड देन अगेन जब नीतू सिंह 15 साल की थी इनकी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। स्पेशली इनकी मदर एक्टिवली इनके लिए काम ढूंढने लगी और तब इनको इनकी पहली फिल्म मिली 1973 में रिक्शा वाला, जिसमें रिक्शा वाला थे रणधीर कपूर। बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल सूट नहीं होता, इसलिए फिल्म भी फ्लॉप हो गई। रणधीर कपूर यानी कि इनके जेठ जी के साथ इन्होंने काफी फिल्में की थी, तब थोड़ी ना पता था कि आगे जाके जेठ जी बनने वाले। वेल इनकी एक साथ में मूवी थी ढोंगी जिसका यह गाना बहुत सही है, इसका रीमिक्स भी काफी पॉपुलर हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

नीतू सिंह जी हिंदी फिल्मों के फेम गेम में कब आई? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो, एज अ चाइल्ड एक्टर तो उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म दो कलियां, उसमें वो इतनी अडोरेबल लगी हैं, वो बहुत पॉपुलर हुई थी तब एज बेबी सोनिया, तब वो काम करती थी। फिर बड़ी होके एज एन अडल्ट तो नहीं बोलेंगे, वो 15 साल की थी एक्चुअली जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी एज अ ग्रोन अप, विच वॉज रिक्शा वाला इन 1973, विच फ्लॉप्ड। लेकिन उसी साल she became immensely popular with this super duper hit film जिसमें उनका सिर्फ एक गाना था। एक्चुअली पूरा रोल उनका था, लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी बढ़ गई थी कि उनका रोल कट करना पड़ा, बस ये गाना रखा गया। लेकर हम दीवाना दिल, यादों की बारात फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। सात हजार पाँच सौ रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें रख लो, बीच में रख लो हमें।
4: अरे यार
3: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम है लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना।
4: हाँ?
3: भैया पैसे बाहर मगाए।
4: आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
5: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

आपको पता है नीतू सिंह की मम्मा खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनका नाम था राजी सिंह और नीतू सिंह के करियर को वही कंट्रोल करती थी, उनके कॉस्ट्यूम्स मेकअप का ध्यान रखती थी। इनफैक्ट नीतू सिंह की एक दो फिल्मों में उन्होंने ऐसे छोटा मोटा रोल भी किया है, लेकिन एक मेजर रोल जो उन्होंने नीतू सिंह की लाइफ में निभाया वो था उनकी लव स्टोरी के अगेंस्ट विलन का। जी सो अमर अकबर एंथनी में जैसे तैयब अली होते हैं जो अकबर और सलमा का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करते हैं, रियल लाइफ में ये राजी सिंह जी थी नीतू सिंह की मामा जो ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रही थी, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि कपूर फैमिली के मैन काफी रूमर्स में स्कैंडल्स में फंसते रहते हैं और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के करियर में इस तरह का कोई लफड़ा हो। इनफैक्ट जब नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ डेट पर जाती थी तो साथ में उनकी एक कजिन भी जाती थी चेक रखने के लिए, पर धीरे धीरे धीरे फिर वो मान गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
2: हाँ हाँ सुना।
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब?
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तू चले?
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

नीतू सिंह और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात 1974 की फिल्म जहरीला इंसान के सेट्स पर हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तब मात्र 15-16 साल की थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर इनको बहुत बुली किया करते थे। ये बहुत इरिटेट और अनॉय हो जाती थी उनसे। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती मतलब ऐसी कि अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऋषि कपूर नीतू सिंह से मदद लेते थे। कभी गर्लफ्रेंड को टेलीग्राम भेज, कभी उसके घर पे फोन लगाओ, उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो गर्लफ्रेंड को बुलवाओ, इस तरह के काम। लेकिन ये दोस्ती प्यार में कब बदली, कौन सी फिल्म की शूटिंग करते हुए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात तो 1973-74 में हुई थी जहरीला इंसान फिल्म के सेट्स पर, लेकिन उनका प्यार हुआ था कभी कभी फिल्म के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उससे पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक्चुअली दोस्त से पहले भी इनका बैंटर चलता था। ऋषि कपूर काफी बुली किया करते थे नीतू सिंह को, और दोस्त ऐसे बने कि ऋषि कपूर की जो तब गर्लफ्रेंड थी उनसे उनका ब्रेकअप हो गया था, तो उनको मनाने के लिए वो नीतू सिंह की हेल्प लेते थे। वेल, वो गर्लफ्रेंड तो नहीं मानी, लेकिन ऋषि कपूर साहब को नीतू सिंह के लिए उनकी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो गया। उस टाइम ये दोनों इतनी फिल्में साथ में कर रहे थे कि एक दूसरे के ऐसे यूज्ड टू होने लग गए थे। नीतू सिंह जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा था, तो कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये प्यार की आग दोनों तरफ बराबर टाइप की लगी हुई थी, लेकिन कोई कन्फेशन नहीं हुआ था। फिर कभी कभी फिल्म के बाद जब ऋषि कपूर साहब एक और फिल्म की शूटिंग यूरोप में कर रहे थे, तो वो नीतू सिंह को बहुत मिस करने लग गए। तब उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेजा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मुझे अकेला लग रहा है। एंड दैट वॉज सॉर्ट ऑफ लव कन्फेशन।

अगर आप सारा जमाना हसीनों का दीवाना, यस याराना फिल्म का जो गाना है, इसका आप वीडियो देखें तो देखेंगे कि आधे गाने में नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के साथ हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सॉन्ग में वो गायब हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसकी बड़ी ना क्यूट सी वजह है। तो इस गाने की जब शूटिंग हो रही थी 1979 में, तब ऋषि कपूर नीतू सिंह की नई नई सगाई हुई थी और सीन कुछ ऐसा हो रहा था, कोलकाता में ये शूटिंग हो रही थी और फोन्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो ऋषि कपूर नीतू सिंह की बात ही नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस गाने की शूटिंग के टाइम पे शी ब्रोक डाउन एंड रोने लग गई। तब अमिताभ बच्चन साहब ने इनसे पूछा कि क्या हो गया, उन्होंने बताया कि ये हो गया, याद आ रही है, बात नहीं हो पा रही है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनकी मुंबई वापसी की टिकट वगैरह करवाई और इसीलिए वो आधा गाना नीतू सिंह के बगैर ही शूट हुआ। चलिए इस फिल्म का एक और ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं, जिसमें सारे गाने में नीतू सिंह जी दिखाई देती हैं अमिताभ बच्चन के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हाँ
3: बोलो कौन।
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल कौन रहा है।
4: बोल कौन रहे हो, कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो,
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
3: तो पूछे घुसे थे क्या अंदर।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार।
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर।
3: कब आया था, कब घुसा अंदर।
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: तो कहाँ से रहा, तो नहीं हो गया है।
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया।
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: सीवर में मरा रहा है तू,
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने।
4: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा, काम करो एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो।
4: कुकड़ू को
5: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
3: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
2: अच्छा है।
1: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
2: हाँ हाँ सुना,
1: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
2: मतलब
1: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
2: तो चले,
1: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
2: और कुछ?
1: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
2: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
1: जनवरी में ही बताया था।
0: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
1: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज़ विद चारू, ओनली

आपको पता है नीतू सिंह ऋषि कपूर के साथ अपनी शादी में सबसे ज्यादा इनसिक्योर कब हुई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तब हुई थी जब 1985 में डिंपल कपाड़िया की वापसी हुई थी ऋषि कपूर के साथ सागर फिल्म में। बिकॉज बॉबी के टाइम पे इन दोनों के अफेयर के रूमर्स थे और उस वजह से नीतू सिंह काफी घबराई हुई थी। वैसे नीतू सिंह जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ऋषि कपूर जी की शादी के बाहर जो इन्वॉल्वमेंट्स थे उनके बारे में बात की है और ये भी कहा है कि वो कभी इतनी इनसिक्योर नहीं होती थी बिकॉज शी वाज श्योर कि वो लौट के उनके पास ही आएंगे। लेकिन ये डिंपल कपाड़िया वाले टाइम पे, सागर के टाइम पे, शी वाज वेरी स्कैर्ड। और जबकि यहाँ सच ये था कि इस टाइम पे ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल, ये बात और इसके अलावा और भी बहुत ही तड़कती भड़कती ढंटड़न टाइप की बातें ऋषि कपूर जी ने इस बुक में रिवील की हैं या कन्फेस की हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: तुम्हें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

नीतू सिंह जी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, वो ज्यादातर उनकी कपूर फैमिली से जुड़ी हुई है। यू नो, कपूर खानदान की बहू, ऋषि कपूर की वाइफ, रणबीर कपूर की मम्मा, आलिया भट्ट की मदर इन लॉ। लेकिन उनके बारे में शी एज अ पर्सनालिटी बहुत कम इंटरव्यूज या कम इन्फॉर्मेशन है, जिसकी मेन वजह ये है कि जब भी अपने करियर की पीक पर थी 1970s, नीतू सिंह वॉज एवरीवेयर, पता नहीं कितनी सारी फिल्में। एंड ये सब छोड़ छाड़ के 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली। वैसे तो ऋषि कपूर साहब ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ये रिवील किया है कि उन्होंने कभी इनको फोर्स नहीं किया अपना करियर छोड़ने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कन्फेस किया है कि इन्होंने कभी इनको ज्यादा इनकरेज भी नहीं किया वापस फिल्मों में काम करने के लिए, क्योंकि तब वो एक बहुत बड़े मेल शोविनिस्ट थे और बाद में सुधर गए थे। ये सब उन्होंने ही लिखा है अपने बारे में, मैं नहीं बोल रही। और बाद में कई ओकेजंस पे ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को इस बात के लिए शुक्रिया भी कहा। एक्चुअली नीतू सिंह जी ने कहीं एक इंटरव्यू में शायद ये कहा भी था कि क्योंकि वो बचपन से काम कर रही थी, उन्होंने अपनी लाइफ जी ही नहीं थी और इसीलिए ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: Visit Virani Jewelers on Oak Tree Road. 0% making charges on 22 carat and diamond jewelry and 100% value on your gold trade-in. Visit ViraniJewelers.com.
0: Celebrate freedom with Mirchi. July 4th Independence Day se August 15th Independence Day tak. Sirf freedom hi freedom.
3: Only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi. Fresh Maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: आज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स

0: मैं खत्म तो खेल खत्म। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4 आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 carat एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: क्या इम्परफेक्शन ही हमें बेहतर इंसान बनाती है? आइए इस बात को समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: लेनेट कोहन है, बहुत कमाल के पोएट हैं, उन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं, उनकी एक गीत की याद दिला दी, उसमें वो कहते हैं कि इम्परफेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कुछ क्रैक नहीं होता ना, अंदर लाइट नहीं आती, और जब लाइट आती है तो ही आपके जीवन में अंधेरा हटता है। बहुत खूबसूरत बात है।
5: इम्परफेक्शन को आप कैसे लेते हैं? आप उसको लाइट की तरह लेते हैं या आप उसको डार्कनेस की तरह लेते हैं? ये भी जीवन जीने का एक पर्सपेक्टिव है
4: जी।
5: कई लोग उससे किनारा करना चाहते हैं, कई लोग उससे भागना चाहते हैं, और कई लोग उसको समझते हैं कि ये केवल एक ट्रिगर है, और वो रियलाइज करके उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना, हैव यू एवर सीन अ वॉरियर विदाउट अ स्कार? मैंने आपने कभी किसी योद्धा को
4: बिना इंजरी के बिना देखा
5: नहीं देखा होगा, और वो इंजरी को अपने बहुत प्राउडली फील करते हैं, वो उसमें कोई घबराते नहीं है, वो उसको बैच की तरह ऑनर की तरह उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे जीवन में कोई कमी है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है।
4: सही बात।
5: लेकिन उस कमी को आपने रियलाइज किया, दृढ़ता से आपने उसको परिवर्तन कर लिया, वो ज्यादा बड़ी बात है। उसको छिपाना, उससे किनारा करना
4: जरूरत
5: नहीं है। मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस।
4: चांद में भी तो दाग है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: क्या फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि जिंदगी का एक टीचर भी हो सकता है? आइए इस बारे में जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, आपने कोई मैचेस देखे हैं?
5: नहीं
4: क्रिकेट में तो इंटरेस्ट नहीं, वो तो मुझे पता है, फुटबॉल में भी इंटरेस्ट नहीं है?
5: I haven't seen any match. I enjoy sports, पर नहीं, ऐसे कोई भी मैच ऐसा बैठ करके पूरा नहीं देखा।
4: तो फुटबॉल जो है वो बहुत कमाल का खेल है, और इस बार क्योंकि US में मैचेस हो रहे हैं तो रात को मैचेस हो रहे हैं, तो कई लोग जाग जाग के देख रहे हैं और हर फुटबॉल वर्ल्ड कप ना बहुत अजीबो गरीब चीज जरूर निकाल के लाती है, कुछ खूबसूरती से भी निकल के आते हैं। तो मुझे याद है 1990 में रोजर मिला नाम का एक प्लेयर था, वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गया था, कैमरून की तरफ से आके उसने दो मैचेस में गोल किए और सेंसेशन बन गया था। इस बार के जो वर्ल्ड कप है वहां पर काबो वर्डे बोल के एक टीम है जिनको शायद किसी ने कोई चांस नहीं दिया था, उम्मीदें ही नहीं थी, और वो उन्होंने आके ऐसा खेल खेला कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है, जब आपके पास कुछ भी हारने को नहीं होता ना, आप ऐसा खेल खेलते हैं कि दुनिया देख के दंग रह जाती है।
5: हाँ, ये सच बात है, क्योंकि क्या है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत प्रेशर डालती हैं, और उस प्रेशर को फेस करने के लिए उतनी मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए।
4: जी,
5: तो जो टीम्स हैं जो बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं, उसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये जीतेंगे, तो उनको उतना मेंटली स्ट्रांग होने की भी जरूरत है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है, आप देखिए हजारों लोग सामने देख रहे होते हैं, लाखों लोग टीवी पर उनको देख रहे होते हैं, देर ऑल थिंकिंग अबाउट दोज पीपल,
4: राइट?
5: आप जिनके बारे में सोच रहे हैं आपका वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है, वो आपको अपलिफ्ट भी करता है, वो आपके अंदर फियर भी क्रिएट कर सकता है।
4: बिल्कुल,
5: एक आप देखें ना, एक एनर्जी है जो उन तक पहुंच रही है, में एनर्जी वो पॉजिटिव भी है, तो वो एनर्जी भी उनको मोटिवेट करती है। इसलिए आप कई बार देखें जब वो स्टेडियम में खेलते हैं तो उनको खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, वेदर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो उनको एम्पावर करती है, अपलिफ्ट करती है। पर ऑन दी अदर हैंड अगर वो एनर्जी नेगेटिव है, तो उसको फेस करना और उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ना पड़े, उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। और जो आप नई टीम की बात कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सो दे वर एबल टू गिव इन देयर कंप्लीट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हमारी वाइब्रेशंस और माइंडसेट हमारी परफॉर्मेंस को सच में प्रभावित करते हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, जब एनर्जी की बात करते हैं तो एक तरफ है कि जो बहुत स्ट्रांग टीम है उन पे एक्सपेक्टेशन का बोझ होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें जो ज्यादातर फैंस है वो पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं कि ये स्ट्रांग टीम है, ये कर लेगी। जो टीम किसी को उम्मीदें नहीं है उनको तो कोई वाइब्रेशन आ ही नहीं रही है।
4: आप उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं ना
3: जी,
4: शायद आप सोच ही नहीं रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि कभी कभी आप ये देखें, जो हम बातें करते हैं कि कर्म हम कभी करते हैं फल कभी निकल कर आता है, तो फॉर दिस टीम ऑल्सो द कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन हैज बीन कि जो अंदर के टीम प्लेयर्स हैं उसके, वो बहुत समय से अपने ही लेवल पर एफर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे और इतना अच्छा खेलेंगे। लेकिन क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ अगर कर्म करते जाते हैं, हार्डवर्क करते जाते हैं, तो ये चीज भी आप देखते हैं कि उसका आउटकम, जब आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया तभी वो आउटकम निकल कर आता है। हमारे हाथ में सिर्फ होता है हमारा एफर्ट, प्रेपरेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, लेकिन उसका फल निकलता जरूर है।
3: तो एफर्ट और कंसिस्टेंसी में कमी मत रखो, क्योंकि उसका फल आपको कब मिलेगा ये आपको नहीं पता।
4: फेथ रखना होता है। ओवरनाइट कई प्लेयर्स एकदम फेमस हो जाते हैं,
3: बिल्कुल
4: वो हमें लगता ओवरनाइट है,
3: लेकिन बहुत लंबा प्रेपरेशन होता है।
4: वो बीज कहीं बोया था, फिर उसको पानी देना, फिर वो उसका फल आज निकला है, पर वो ऐसा ओवरनाइट नहीं होता है। कोई भी चीज ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होती, होता तो कर्म का ही फल है, लेकिन वो सिंसेरिटी से किए हुए कर्म का फल अचानक दिखाई देता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब एक विनर किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान से हार जाए तो उस हार को किस नजरिए से देखना चाहिए, आइए जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है, कभी कभी ऐसे टीम्स होते हैं जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और वो आके ऐसा खेलते हैं कि लोग बोलते हैं अरे ये कहाँ थे। इसी सिलसिले में एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में इंडिया जो है क्रिकेट टीम जो है मेंस क्रिकेट टीम वो आयरलैंड से हार गई, और आयरलैंड ने जिंदगी में किसी भी फॉर्मेट में इंडिया को कभी नहीं हराया, और ये लोगों के लिए बहुत शॉक वाली बात थी। और इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड चैंपियंस थोड़े दिन पहले बने थे, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि ऐसी टीम आके, काबू वर्डे जैसी टीम आके सबको दंग कर देती है, और आयरलैंड जो है जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था वो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में जो चैंपियंस रहे उनको हरा देती है। तो एक है कि भैया जब आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप आके बहुत खुलेआम खेलते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को होता है कि जब आप पे कोई भी प्रेशर नहीं होता, जैसे दूसरे साइड में इंडिया है, हमको पता है कि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, सामने आयरलैंड है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमको अपना ए गेम खेलने की जरूरत नहीं है?
5: अब ये तो उनको ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो होता ही है ना। सी, हार जीत एक अलग मैटर है, कोई हारा कोई जीता, पर वो क्यों हार हुई उसकी रिफ्लेक्शन

0: बहुत जरूरी है कि वो अलबेलापन था, केयरलेसनेस थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, पॉलिटिक्स था, बहुत कुछ होता है जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है गेम के ऊपर. जब आप बहुत सीनियर लेवल पर खेलते हैं, आप ओलंपिक्स लेवल पर या वर्ल्ड कप लेवल पर खेलते हैं, उस समय पर एक फिजिकल प्रिपरेशन ही सफिशिएंट नहीं होती है. उस लेवल तक जो पहुंचे होते हैं वो सब टैलेंटेड हैं, वो सब बहुत फास्ट हैं, वो सब फिजिकली स्ट्रांग हैं. उस लेवल पर जाकर के जब आप जीतते हैं, जस्ट इमेजिन एट द लेवल ऑफ ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप, वो सारे ही प्लेयर्स अपनी कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं. लेकिन वो जो एक जंप है जिसमें कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें आई फील अ लॉट इज टू डू विद मेंटल प्रिपरेशन.
1: लेकिन यहाँ पे तो वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं.
0: हाँ, वर्ल्ड कप चैंपियन है किसमें? एक्सपर्टीज में, टैलेंट में, स्किल के अंदर. लेकिन उसके बाद भी समथिंग वेंट रॉन्ग ना, कहीं तो कुछ हुआ है. अब वो क्या चीज है जो मेंटल प्रेशर जो कई बार होता है वो बहुत फियर क्रिएट करता है. कई बार फियर क्रिएट करता है, फियर आपको कभी कभी इनएफिशिएंट बना देता है. दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, कुड बी, आई डोंट नो, दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर. लेकिन टीम को आपस में बैठ करके रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए. आपने अपना 100% दिया और उसके बाद भी जीत नहीं हुई, इट इज ओके, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. पर कहीं पर कमी रही, चाहे वो फिजिकल प्रिपरेशन में थी या मेंटल प्रिपरेशन में थी, या टीम आपस में उनों का आपस में जो टीम बिल्डिंग होनी चाहिए वो नहीं थी, क्या किस चीज की कमी थी, वो तो फिर टीम को बैठकर रिफ्लेक्ट करना होगा.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. Only on Mirchi. It's hot.

से ना हो पाएगा। कौन बोला

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: जो रिसोर्सेज हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं वही हमारी आदतों और चॉइसेस को कैसे शेप करते हैं, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: कभी कभी क्या होता है, हम कंज्यूम वही करते हैं जो अवेलेबल होता है। अगर वो अवेलेबल ही ना हो तो हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सालों पहले मैं एक शादी में गया था और वो जो पूरा गांव था वो एक कम्प्लीटली जैन गांव था। वहाँ आलू प्याज मिलता ही नहीं है। तो मुझे याद है, और वो क्योंकि जैन गांव था तो खाने पीना सनसेट के पहले सब बंद हो जाता था। अब हमारी वो आदत नहीं है, तो हम जब वो शादी में गए, हम मौज मस्ती के लिए गए थे और पता चला कि 6 बजे के बाद कुछ मिल ही नहीं रहा। सो धीरे धीरे फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ कंप्लेनिंग वी रियलाइज कि भाई यही तौर तरीका है, यू हैव टू फिगर दिस आउट। तो जब आलू प्याज मिलेगा ही नहीं, मैं खाऊंगा कहाँ से। तो अगर मैं सप्लाई को ही चेंज कर दूं, डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगी।
5: ये है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो सप्लाई करने वाला है उसकी इंटेंशन पर भी डिपेंड करता है ना। अगर आपकी इंटेंट उस समय थी जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है, और दूसरी इंटेंट है कि नहीं धर्म एक साइड में गया, लोग आ रहे हैं, इंजॉय करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए, उनको मौज मस्ती फील होनी चाहिए, उनसे वैलिडेशन मिलना चाहिए कि सब बहुत अच्छा था, लेकिन इतना उस समय पर करेज होना चाहिए कि मैं अपने धर्म के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला, भले कोई कहे बोरिंग है, मस्ती नहीं थी, एंजॉयमेंट नहीं थी। देवर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर रिलीजियस प्रिंसिपल ना, नहीं तो वो 6 बजे क्यों बंद करते थे। गांव के कारण थोड़ी ना बंद कर रहे, वो तो किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, भले आप रिलीजन ना भी ले पर किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया ना। ऐसे ही कई परसेंटेज लोग आपको ऐसे मिलेंगे आज भी जो वही कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोगों का बेनिफिट हो, चाहे उसको व्यूज मिले
4: या ना मिले,
5: ना मिले उसको रिकग्निशन मिले ना मिले, अवार्ड मिले ना मिले, पर वो वही क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको है कि नहीं भले 2% भी, बट आई वांट टू इम्पैक्ट द सोसाइटी इन अ बेटर वे। लेकिन कईयों का वो इंटेंट नहीं होता, कईयों को होता है कि बस चलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए, मनी बनाना चाहिए, वैलिडेशन मिलना चाहिए, चाहे हम कुछ भी पिरोसे। तो उनके लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉफिट, विच इज, अब वो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर हर एक के इंटेंट में आ जाए कि अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए तो अपने आप बंद हो जाएगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
2: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
1: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
3: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि मुझे एक जगह पर ज्यादा समय तक रहना मुश्किल लगता है, ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे समझा जाए या सुधारा जा सकता है?
3: एक्चुअली जब हम कभी किसी समय पर लंबा समय रहते हैं, जब कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि सब न्यूनेस होती है उसके अंदर। लंबा समय रहते हैं तो उन लोगों के संस्कार हमारे सामने आते हैं, सब अलग अलग होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। लंबा समय कहीं रहना है तो शक्ति की ज़रूरत होती है, आपको सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, परखना भी पड़ेगा, सहयोग भी देना पड़ेगा। और क्योंकि जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होती है तो इजी ऑप्शन होता है किनारा करना, जो हमेशा राइट ऑप्शन नहीं होता, लेकिन किनारा करना हमें इजी लगता है। तो इसका ये कारण है कि एक्चुअली में शक्ति की कमी है। अगर आप उस स्थान पर रहना चाहते हैं, कभी कभी तो हम उस स्थान को छोड़ना भी चाहते हैं, हो सकता है बहुत टॉक्सिक है, हम विलिंगली छोड़ना चाहते हैं, कॉन्शियसली छोड़ना चाहते हैं, पर आप रहना चाहते हैं और रह नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी विल पावर को, इनर पावर को डेवलप करें। क्योंकि एक ही स्थान पर लंबा समय रहना है तो सबके साथ मिल करके रहना पड़ता है संगठन में।
2: आई थिंक शायद ये रेस्टलेसनेस की बात भी कर रहे हैं कि शायद मैं एक जगह कहीं टिक नहीं पाता।
3: अगर वो रेस्टलेस भी हो रहे हैं, अगर वो बोर्ड भी हो रहे हैं, या वो लोगों के साथ मिल करके नहीं चल पा रहे हैं, तो वो इमोशनली फिट नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। वो रेजिलियंस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज को रोज करना तो वो चीज अब आपको खुशी नहीं देगी, आपको वो चीज खुशी से करनी पड़ेगी। जब कोई चीज आप पहली बार करते हैं तो उस चीज के अंदर बहुत न्यूनेस होती है। आप कुछ कला भी सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई स्पोर्ट भी सीखते हैं, तो इनिशियली आपको बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशन बना लें तो जरूरी नहीं है रोज वो स्पोर्ट आपको उतनी खुशी देगा, आपको खुशी से प्रैक्टिस करनी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Gulabi saadi ani lali lal la. Disate me bari raja photo maza ka.
4: T-Series present The Mall 4.
5: Gulabi bina chatni kaise bani.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: शारदा शिंदे हैं, वो लिखती हैं छत्रपति संभाजी नगर बीड बाईपास से कि मैं डेली आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। मेरा बेटा 14 साल का है, मैं उसे कुछ अच्छा सिखाऊं तो सुनता नहीं है, समझता नहीं, लेकिन बुरा कुछ भी जल्दी कैच कर लेता है। इन सब गलत चीजों से उसे दूर कैसे करूं?
3: एज अ पेरेंट हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफेक्ट हों, पर उनके ऊपर कई चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ पेरेंट का ही नहीं होता। उनके ऊपर स्कूल का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सोशल मीडिया का कई इन्फ्लुएंसेस होते हैं
2: जी।
3: और कभी कभी वो करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको एक्सेप्टेंस मिलती है। हमें लग रहा होता है बुरा है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है।
2: सही बात।
3: अगर वो चीजें नहीं करता है तो शायद उसको सुनना पड़ता है कि वो ओल्ड फैशन्ड है, ऑर्थोडॉक्स्ड है,
2: कूल नहीं है,
3: कूल नहीं है, इसलिए वो चीजें कई बार नहीं भी करना चाहता तो भी कर देता है। इसलिए ऐसे बच्चे को सिर्फ यही नहीं समझाना होता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको शक्ति की जरूरत है। 14-15 साल में आपको समझ में आ जाता है, पर आपके पास राइट करने की पावर नहीं होती। आप पीयर प्रेशर में आकर के, सोशल प्रेशर में आकर के वो कर देते हैं जिसमें आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो आप केवल उनको शिक्षा नहीं दें, लेकिन अभी कोई कहेगा पावर कैसे दें? तो पावर, अगर आप एज अ मदर वरिड नहीं होते, परेशान नहीं होते, डिस्टर्ब्ड नहीं होते, अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, घर का एक अच्छा पावरफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं, परमात्मा की याद में भोजन बनाकर उसको खिलाते हैं, ये सारी चीजें उसको एम्पावर करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Introducing the best diamond jewelry on Oak Tree Road. Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूँ तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल हैं और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो अगर मंडे ना कोई इंसान होता तो उसे देखकर हम एक ही डायलॉग हर बार मारते, भाई तू फिरा गया। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। और मुझे पता है आज मंडे नहीं है बल्कि वीकेंड की शुरुआत के एक दिन पहले का दिन है। फिलहाल तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग योर टिफिन, फिनिशिंग योर नाइट शिफ्ट या फिर सीक्रेटली प्रिटेंड कर रहे हो टू वर्क फ्रॉम होम, मैं बोलो तो प्रिसला तुम्हारे साथ अगले कुछ घंटों तक रहने वाली हूँ और हम लोग बनाने वाले हैं तुम्हारी और मेरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिर्चीदार। यहाँ पर चाय गर्म है, कॉफी गर्म है, गॉसिप गर्मा गर्म है लाइक आई ऑलवेज से, और थोड़ी सी देर में यहाँ पर लगने वाला है बॉलीवुड का तड़का, देसी नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी मस्ती, एक्स्ट्रा मलाई मारकर थोड़ा सा गॉसिप, फन एंड अराउंड द वर्ल्ड के अपडेट्स तुम्हें मिलने वाले राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो रेडी हो जाओ, बकल अप एंड अपना चाय कॉफी ब्रेकफास्ट लेकर बैठ जाओ मेरे साथ में। मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और अभी मिर्ची धार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने पहले इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Listener MA, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब आ चुके हम वो जगह पर जहाँ पर हम चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले 1776 में जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को न्यूयॉर्क में अपनी आर्मी के सामने जोर से पढ़वाया था। फिर 1816 में अर्जेंटीना ऑफिशियली स्पेन से आजाद हुआ था। 1875 में शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज के दिन एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब तब से लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और बस दो साल के बाद 1877 में लंदन में पहला विंबलडन चैंपियनशिप हुआ। व्हाइट आउटफिट, स्ट्रॉबेरीज, टेनिस एंड हम, हम थे नहीं लेकिन ह्यूमंस तो थे। टीवी के सामने एक्सपर्ट कमेंट्री का भी एक सीजन शुरू हुआ। 1893 में सर्जन डैनियल हेल विलियम्स ने दुनिया की पहली सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी परफॉर्म की। साइंस उस दिन लिटरली प्राउड फील कर रहा होगा। और फिर 2002 में अफ्रीकन यूनियन ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई एंड यूनिटी और कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एंड दैट्स द एंड ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग जर्नी फॉर टुडे। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझसे कनेक्ट भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब
0: विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले,
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, July 4th इंडिपेंडेंस डे से August 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
2: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काय।
3: टी सीरीज प्रेझेंट धमाल 4।
4: गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटणी कैसे बनी।
3: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर।
5: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
6: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my beautiful desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब फीफा के बारे में बात करते हैं.
2: मिर्ची वॉच इट.
1: सबसे पहले तुमको पता ही होगा कि अर्जेंटीना ने एक नेल बाइटिंग 3-2 विन के साथ इजिप्ट को एज किया, जबकि स्विट्जरलैंड ने पेनल्टीज में कोलंबिया को हराकर हिस्ट्री बना दी और क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री मार ली है. पूरे सोशल मीडिया पर वीएआर और रेफरिंग की डिस्कशन चल रही है और डिस्कशन के साथ आई थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी. यूरोप के कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो के रोल की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक सस्पेंडेड यूएस स्ट्राइकर को अलेजेडली पॉलिटिकल प्रेशर के बाद खेलने दिया गया. फीफा पर सवाल उठ रहे हैं कि रूल्स सबके लिए सेम है या फिर वीआईपी पास कहीं कहीं मिल रहा है. उधर इजिप्ट के कोच हुसैम हसन और स्ट्राइकर मोस्तफा जीको ने भी अर्जेंटीना के खिलाफ रेफरिंग डिसीजन पर सवाल उठाए हैं. फीफा के रेफरिंग चीफ ने ऑफिशिएटिंग का बचाव किया है, लेकिन डिबेट अभी फुल स्पीड पर चल रही है. और अब एक अच्छी खबर बताती हूँ कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हाफ टाइम शो होने वाला है और स्टेज लिटरली स्टार स्टार्टेड होने वाला है, जहाँ पर जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉयज, बीटीएस, गुस्तावो डुडामेल एंड PS22 कोरस विद कोल्डप्ले मिलकर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी फाइनल को ब्लॉकबस्टर बना देने वाले हैं. तो मुझे लगता है इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यादगार रहने वाला है. और याद से याद आया कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, मिर्ची की वाइब अपने साथ बना के रखने के लिए मुझे भी फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mitri Mornings. Mitri Mornings with Priscilla. It's hot.
2: नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में मौसम का हाल।
3: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। जब पहले के जमाने में इसी तरह से न्यूज बोली जाती थी, राइट, स्पेशली मौसम का हालचाल बताने के लिए। और मैं तुम्हें अपने स्टाइल में मिर्ची मारकर मौसम का हालचाल बताती हूँ। अभी बाहर का टेम्परेचर इज अराउंड 69 डिग्री फारेनहाइट। ब्राइट और सनी चल रहा है माहौल और फील हो रहा है 70 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब मॉर्निंग वॉक करना है, कॉफी रन या फिर ऑफिस कम्यूट के लिए वेदर जो है कह रहा है किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि 10 बजे से 1 बजे के बीच में घनन घनन करके बदरा घिराएगी, यानी कि आसमान थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा और लगभग 1 बजे के आसपास थंडरस्टॉर्म्स भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर लंच ब्रेक में तुम बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाना। एंड ऑफ कोर्स बाहर जाते टाइम कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल। आज का हाई टेम्परेचर रहने वाला है 84 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से इट्स गोना फील लाइक 85 डिग्री फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि हवा ज्यादा नखरे आज नहीं करने वाली है, लेकिन विंड गस्ट्स आर अराउंड 18 किलोमीटर पर आवर और हेयर स्टाइल बचाने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अगले 24 आवर्स में करीब 9 मिलीमीटर की बारिश की पॉसिबिलिटी है। तो अम्ब्रेला कैरी करना है तुम्हें अपने साथ में, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। वैसे कल का हाई था 87 डिग्री फारेनहाइट और आज थोड़ा सा काइंड ऑफ वर्जन ऑफ दिस टेम्परेचर मिल रहा है। मुझे लगता है नेचर ऑलरेडी वीकेंड मोड में आ चुका है। तो निकलते वक्त दो चीजें ले जाना बिल्कुल मत भूलना, वो है सनग्लासेस एंड योर SPF 50++++। एंड नीडलेस टू से कि मिर्ची वाइब्स बना कर रखो, मिर्ची लगा कर रखो। मुझे यानी कि प्रिसिला का सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मुझे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRI।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Alright, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। Welcome to the second hour of मिर्ची मॉर्निंग्स and now it's time for
2: मिर्ची आवर का थ्री।
1: सबसे पहले द यूएस लॉन्च्ड फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान आवर्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड एन इंटरिम अग्रीमेंट टू एंड द वॉर वाज ओवर। ऑल्सो नेटो समिट के दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें लगता है ईरान उन्हें टारगेट कर सकता है। फिलहाल ये स्टेटमेंट ग्लोबल हेडलाइन बनी हुई है एंड अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर्स आर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपिंग सिचुएशन। नंबर टू पर, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन हुए हैं। इस बीच इंडिया ने सभी तरफ से रिस्ट्रेंड डी एस्केलेशन और सिविलियंस की सेफ्टी की अपील की है। होपफुली डिप्लोमेसी विल टेक द लीड। एंड फाइनली, राफेल मार्केज अब मेक्सिको के नए हेड कोच बन गए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक रहने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद टीम ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Burka, burka. La vieja la burka.
0: Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और पता है आमिर खान ने वेडिंग पर अपनी वाइफ गौरी स्प्रैट को गिफ्ट के लिए एक अल्ट्रा रेयर कैपुशन कट नेचुरल रूबी रिंग जो मेडागास्कर से स्पेशली सोर्स की गई है। और पता है इस मास्टरपीस को बनाने में लगे हैं 256 आवर्स और 131 पेयर्स ऑफ स्किल्ड हैंड्स। इससे पहले भी आमिर ने गौरी को ब्राजील से सोर्स्ड एक्वामरीन रिंग गिफ्ट की थी। वैसे बॉलीवुड का एक फनी कोइंसिडेंस नोटिस किया है तुमने? शाहरुख खान की वाइफ भी गौरी है और अब आमिर खान की वाइफ का नाम भी गौरी हो चुका है। अब बचे सिर्फ सलमान खान। वैसे शादी वेडिंग रिंग की बात चली रही है तो आरके जूल्स जो है वो लेकर आए हैं रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, जहां पर तुम्हें देना है जीरो लेबर एंड जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस। सिर्फ गोल्ड और डायमंड की ट्रू वैल्यू तुम्हें वहां मिल रही है। आरके जूल्स पर तुम्हें मिलता है बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। और अगर फेस्टिवल की शॉपिंग अभी से शुरू करनी है तो पहुंचो आरके जूल्स पर। वीकेंड का प्लान तो सेट है। अभी आगे का प्लान है कि मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूं मैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला और इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई,
1: हाँ हाँ सुना,
0: जून भी आ गया, जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तू चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniejewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to all my July 9 babies. आज का दिन सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि स्पॉटलाइट में भी है. क्यों? बताती हूँ थोड़ी सी देर में. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिन इतना स्वीट हो जितना बर्थडे केक और इतना एक्साइटिंग हो जितना अमेज़न का आउट फॉर डिलीवरी नोटिफिकेशन. और चलो देखते हैं कि आज किस किस सेलिब्रिटी के साथ तुम अपना बर्थडे शेयर करते हो. हॉलीवुड के फॉरएवर फेवरेट टॉम हैंक्स, जिन्होंने फॉरेस्ट गंप और सेविंग प्राइवेट रायन जैसी बहुत सारी आइकॉनिक films they are one of my favorite actors and I'm sure he's one of your favorite actors too. Rock music ke superstar Jack White, legendary band The White Stripes ke guitarist aur singer, unka bhi aaj happy wala birthday hai. Saath saath mein actress and singer Courtney Love aur hamare apne legendary filmmaker Gurudutt sahab, jinki Pyaasa aur Kaagaz ke Phool aaj bhi cinema lovers ke dil mein basi hui hai. Award winning actor Chris Cooper, American Beauty aur adaptation ke liye mashhoor, unka bhi aaj happy birthday. They are 90s TV ke favorite Fred Savage, yani ki the Wonder Years ke Kevin Arnold. And saath saath mein hamare Bollywood ki graceful diva, former Miss India Sangeeta Bajrani ji ka bhi aaj happy wala birthday hai. To agar aaj tumhara birthday hai to ye yaad rakho ki tum sirf saal mein bade nahi hue ho balki ek saal aur interesting ho gaye ho. Aur gifts agar kam mile hai ya bilkul nahi mile to koi baat nahi, khud ko treat dene ka license aaj officially tumhe mil hi chuka hai. Meri taraf se dher sari duaen, khushiyan, unlimited health and wealth and हमेशा के लिए तुम खुश रहो. आज का दिन ब्लॉकबस्टर बना रहे. अपने शाउट आउट भेज सकते हो, केक के पिक्चर्स भेज सकते हो तो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
2: Yeah, the meat bros. Just tell me. I'm you, you wanna sing?

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you, Mirchi Mornings. पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
2: Rajwas wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240, $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राजज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और टाइम आ चुका है कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब हम सुने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी अल्बनीज की सोशल मीडिया रिफॉर्म्स की तारीफ की है और कहा है कि इंडिया उनके कुछ आइडिया से सीख रहा है, स्पेशली ऑनलाइन सेफ्टी के एरिया में। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के 3 प्राचीन आर्टिफैक्ट्स वापस करने की भी बात की है, जिनमें से एक नंदी बुल, एक ब्रॉन्ज ट्राइडेंट और एक 6 हेडेड स्कंदा मूर्ति शामिल है। सेंचुरीज के बाद ये आर्टिफैक्ट्स घर वापस आने वाले हैं। नंबर 2 पर इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि प्रपोज्ड 12.5% टैरिफ को दोबारा कंसिडर किया जाए। ये प्रपोजल इंडियन गुड्स पर फोर्स्ड लेबर कंसर्न से लिंक्ड है, लेकिन इंडिया ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए डायलॉग की ऑफर भी दी है। अब देखना यह होगा कि बातचीत किस डायरेक्शन में जाती है। एंड लास्टली, रिपोर्ट्स के मुताबिक 198 इंडियन सीफेयरर्स के साथ 9 इंडियन फ्लैग टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास रुक गए हैं। इंडियन अथॉरिटीज उनकी सेफ पैसेज के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग जल्दी ही अपने सुरक्षित सफर पर होंगे। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो,
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से आया? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ होने का काम करो। एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
15: Gulabi saadi ani lali lal lal.
16: T-Series present Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Isalan, New Jersey. Conditions apply.
18: Tera kya hoga, Kalya?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab mirchi kha.
2: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग मेरी मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है राशि जोन का पहला अध्याय सुनने का, यानी कि फर्स्ट सिक्स राशि।
2: मिर्ची राशि जोन
1: इरीज यानी कि मेष राशि, ऑफिस में आज तुम अपने हीरो खुद बनने वाले हो। कॉन्फिडेंस का फुल वॉल्यूम रखना क्योंकि अपॉर्चुनिटी तुमसे रेस हारने वाली है। लकी कलर इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, क्रिएटिविटी आज पीक पर है, चाहे प्रेजेंटेशन हो या घर का डिनर हो, अपना सिग्नेचर स्टाइल जरूर दिखाना। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सिर्फ बोलना नहीं है सुनाना भी है, दिल की कॉन्वर्सेशन आज रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल की बात अंदर मत रखो, जो फील करते हो वो प्यार से बोल दो, वरना लोग माइंड रीडर थोड़ी ना होते हैं। लकी कलर फॉर यू इज सफायर, लकी नंबर इज 28। लियो यानी कि सिंह राशि, पैसों का खेल है बाबू भैया, सब पैसों का, और पैसों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। वॉलेट भी कभी कभी ना मंडे मूड में आ जाता है, स्मार्ट डिसीजन लो, टेंशन नहीं लो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज का मंत्रा है ड्रीम बिग, वीनस तुम्हारे फेवर में है, तो जिस काम से डर लग रहा है आज वहीं से शुरुआत करो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 31। And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 1. Part 2 यानी बची हुई 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड मुझे जाकर फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी की अभी मैसेजेस भेजो, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: सुनो जी, वो ज्वेलरी स्टोर का एड फिर से आया टीवी पे।
1: अच्छा है।
0: जनवरी में भी देखा था, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई।
1: हाँ हाँ सुना।
0: जून भी आ गया। जुलाई 4th आ गया, मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल शुरू हो गया।
1: मतलब?
0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए।
1: तो चले?
0: मैं तो रेडी हूँ जनवरी से।
1: और कुछ?
0: 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में।
1: ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था,
0: जनवरी में ही बताया था।
2: विजिट विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी एंड 100% वैल्यू ऑन योर गोल्ड ट्रेड इन। विजिट viraniijewelers.com।
0: सेलिब्रेट फ्रीडम विद मिर्ची, जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे से अगस्त 15th इंडिपेंडेंस डे तक, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, हम सबको फ्यूचर देखने का मन जरूर करता है और उसी के लिए मैं लेकर आती हूँ राशि जोन तुम्हारे लिए. मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला और अब बारी है
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज थोड़ा सा मी टाइम निकालना खुद के लिए. कभी कभी दुनिया को म्यूट करके खुद को सुनना बहुत जरूरी होता है. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, किसी अच्छे से कॉज या टीम के साथ जुड़ने का आज मौका मिल सकता है, तो सोचना मत ज्यादा, सीधे एक्शन ले लेना. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 6. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, करियर में एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलने वाला है. जैसे ही नॉक आए फटाफट से तुम पहुंच जाना वहां पर. फ्यूचर सरप्राइज लेकर आ रहा है, बी रेडी फॉर इट. लकी कलर इज रॉयल ब्लू. लकी नंबर इज 22. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, एडवेंचर सिर्फ सूटकेस से नहीं इमेजिनेशन से भी शुरू होता है. बिग आइडियाज को परमिशन दो उड़ने की. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 11. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सबको चेंज करने की जिम्मेदारी मत लो. आज खुद का बेस्ट वर्जन बनाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 7. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज किसी और की रिदम पे डांस करना पड़े तो भी स्माइल के साथ थोड़ा सा थिरक लेना. कभी कभी सपोर्टिंग रोल जो है उन्हीं को अवार्ड्स मिलते हैं. लकी कलर इज कोरल. लकी नंबर इज 8. एंड दैट्स इट. योर स्टार्स हैव गाइडेड. राशि जोन पार्ट 2 का दी एंड यहाँ पर होता है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो. एंड जाकर मुझे तुम फॉलो कर सकते हो इंस्टा और एक्स पे. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बस मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है. लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बॉलीवुड की मीठी मीठी सी बात बताकर जाती हूँ. जानवी कपूर ने अपनी बहन अंशुला कपूर के रिसेप्शन की फोटोज शेयर की हैं, लेकिन इंटरनेट की नजर सीधा उनकी मेहंदी के डिजाइन पर जाकर पड़ी है. फैंस ने नोटिस किया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम शिखू हिंदी में अपनी मेहंदी में लिखवाया है, बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ. लेकिन मैक्सिमम डिस्कशन हो रहा है बात पर. वैसे प्यार है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट, और अगर बॉलीवुड में हो तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को. लोग रिलेशनशिप स्टेटस अनाउंस करते हैं और कुछ लोग सिर्फ मेहंदी में ऐसे हिंट दे देते हैं. वैसे जानवी काफी टाइम से सॉफ्ट लॉन्च तो कर ही चुकी है उनको, और इसी के साथ मेरा यहाँ से हार्ड लॉन्च बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा. अब मेरा शो का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन हम अपनी गप्पे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं सोशल मीडिया पर. फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची याद रहेगा ना, 9033647244. एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, और मुझे मिस करोगे तो ड्रॉप मी अ मैसेज. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: एक बारिश, बस एक बारिश बाबू मुशाए। इतना जादू होता है ना इस एक बारिश में कि सैड वाले इमोजी को हैप्पी कर देती है ये एक बारिश।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. ऐसे ही थोड़ी ना बारिश की बूंदों को हर लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्री में रोमांटिसाइज किया गया है। कोई बारिश के इंतजार में रोमांटिक हो रहा होता है तो कोई बारिश की बूंदें देखकर रोमांटिक हो रहा होता है। बट आई रियलाइज दिस थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या ये जो बारिश की बूंदे हमें चाय और पकौड़ों की याद दिलाती है ना, वही बारिश की बूंदे लेबर क्लास के लिए कैसे एक दिन की दिहाड़ी भी अपने साथ बहा ले जाती है। बारिश भी हर इंसान के लिए अपने अलग मायने लेकर आती है। I realized कि as an adult, बारिश को देखने का नजरिया भी कैसे बदल सा जाता है ना? चलो अब अडल्टिंग भूल कर चलते हैं नॉस्टैल्जिया में, और इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: नो
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घातक मूवी ने ना हमें सनी देओल का ये एपिक डायलॉग दिया है।
2: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड द फिल्म घातक, which was written and directed by राजकुमार संतोषी। ये मूवी उन्होंने एक्चुअली लिखी तो कमल हसन के लिए थी, लेकिन देन ही वाज सजेस्टेड टू टेक सनी बिकॉज उनकी घायल वॉज टू अ हिट। इस फिल्म को कंप्लीट करने में राजकुमार संतोषी को 5 साल लग गए थे, सिंस वो अंदाज अपना अपना और बरसात की शूट में बिजी थे। एंड सनी वाज ऑल सपोर्टिव ऑफ इट बिकॉज उनके भाई की मूवी बरसात वाज बीइंग डन बाय संतोषी। हालांकि सनी और महेश भट्ट के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका था एट दैट टाइम, और सनी ने कसम खा ली थी कि वो अब भट्ट साहब के साथ काम नहीं करने वाले, जिस पर रूमर्स वर के भट्ट साहब ने घातक की ही स्टोरी को कॉपी करके अपनी फिल्म चाहत घातक से पहले कंप्लीट करके रिलीज कर दी, सो दैट घातक को नुकसान पहुंचे। लेकिन जिस फिल्म का टाइटल ही घातक हो, उसे कोई क्या ही नुकसान पहुंचाता। उल्टा चाहत हुई फ्लॉप और घातक हुई सुपरहिट। लेकिन इस फिल्म की फीमेल लीड पहले रवीना टंडन थी, जिन्हें रिप्लेस किया मीनाक्षी शेषाद्री ने। और अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रवीना ने कहा है कि एक फिल्म मेकर ने अपनी लव स्टोरी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए रवीना को मूवी छोड़ने को कहा था। कहीं वो फिल्म घातक तो नहीं। खोलूंगी एक पोल, लेकिन अभी के लिए एक चढ़ू अगले गाने के लिए बोल। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo mazaka.
7: T-Series present Dhamaal 4.
8: Gulabi bina chatni kaise bani.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
13: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
14: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
15: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
17: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
18: It's 11:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रवीना टंडन का रीसेंट इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फिल्म मेकर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम ही मेरी लव स्टोरी में मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज ये फिल्म छोड़ दो ताकि मैं अपनी लव इंटरेस्ट को कास्ट कर लूं। लुक्स लाइक ये बात राजकुमार संतोषी ने घातक की कास्ट में मीनाक्षी के लिए कही थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। और अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए ना मेरे यारा, तो देयर वाज अ टाइम जब राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री का नाम जोड़ा जाता था। दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं किया एंड इवेंचुअली गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल, लेकिन बैक देन राजकुमार संतोषी वॉज वेरी कीन ऑन मैरिंग मीनाक्षी। और घातक के लिए पहले रवीना टंडन को ही कास्ट किया गया था, लेकिन देन शी हरसेल्फ बैक्ड आउट ऑफ द फिल्म। और ये वही टाइम था जब मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी की बातें हवा में थी। दो लेटर ऑन मीनाक्षी और राजकुमार संतोषी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और मीनाक्षी को इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने किसी मॉडल से रिप्लेस भी कर दिया था, लेकिन वो इस रोल के लिए रोल मॉडल नहीं थी एंड मीनाक्षी वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर द रोल एंड इवेंचुअली उन्होंने ये फिल्म करी। 90s की गप्पे और 90s का मसाला ओनली ऑन मिडडे मोहब्बत विद मी सारा। आला रे आला, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: दिस वॉज नॉट जस्ट अ साउंड, इट वॉज अ लैंग्वेज जो हमने इस एड को देखकर सीखी थी।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: चिकलेट्स याद है आपको? एंड चिकलेट्स का ही ये एड चिकलेट्स काइंड ऑफ ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज इन आवर वर्ल्ड्स यार। मुझे चिकलेट्स खानी भी इसीलिए होती थी सो दैट मैं ये एड इमिटेट कर पाऊँ, मतलब चिकलेट्स खाते खाते चिक चिक चिक चिकलेट्स बोल पाऊँ। बट प्रॉब्लम यही थी कि हम बच्चों को च्युइंगम्स खानी अलाउड ही नहीं थी, और मेरे पास खुद को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही डायलॉग था कि ये च्युइंगम थोड़ी है, ये तो चिकलेट्स है। हे, एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एड इज कि इस एड में फीचर किया है द एक्टर विजय आनंद ने, जिन्हें लेटर ऑन हमने प्यार तो होना ही था में काजोल के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते हुए देखा था। एंड ऑफ लेटली ही इज वर्क्ड इन शोज लाइक दिल ही तो है एंड अनदर कमर्शियल विच बिकेम वेरी फेमस विच ही डिड विद आलिया भट्ट। चलो जी, लेट्स मूव ऑन मिड डे मोहब्बत विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
5: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: डियर विद्या,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज की जनरेशन विद्या बालन को जानती है, लेकिन बालन से पहले हमारा इंट्रोडक्शन विद्या से हो गया था, सिर्फ विद्या से। मासूम बचपन ने हमें विद्या के नाम पर चिड़ियों के फेदर्स की इज्जत करवाना सिखा दिया था। पिंक हो, येलो हो या हो ग्रीन, तुम हमारी किताब के पन्नों में जिस चैप्टर में मिल जाती, आंखें हो जाती रंगीन। और इस बात को हम बड़ा सीरियसली लिया करते थे कि अगर तुम्हें किताब में रखेंगे तो तुम एक से दो हो जाओगी। सोचती हूँ अगर ये बात सच होती तो आज मेरी किताबों के पन्नों में जगह जगह 500 या 2000 के नोट रखे होते मैंने। कमाल की बात तो ये थी कि मैंने तुम्हें कभी पैसे देकर नहीं खरीदा, तुम बस हमेशा यूं ही मिल जाया करती थी मुझे। तो ये भी नहीं पता कि तुम मिलती कहाँ थी और कितने की। आज का टाइम है जब किताबें खूब हैं, लेकिन तुम ऐसे ही अचानक किसी पन्ने को पलट कर नहीं मिल जाती हो। जस्ट लाइक स्कूल के वो दिन जो सिर्फ बातों के जिक्र में है पर है कहीं नहीं। मैं पढ़ाई को भले ही लाइटली लेती थी, लेकिन तुम्हें हमेशा सीरियसली लिया है मैंने। कहीं दिख जाती थी तो तुम्हें उठाकर चूमा जाता था, माथे पर लगाया जाता था और फिर वापस तुम्हारी जगह पर रख दिया जाता था। आज तो एक्स भी चलते फिरते मिल जाया करते हैं, तुम भी तो मिलो कभी किसी पन्ने में। आज भी तुम्हारा एक से दो होने का इंतजार करती तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, जो कि यहाँ के अलावा आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर बाय द नेम मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: It's 12:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Gulabi saadi ani lali lal lal.
6: T-Series present Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दया आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: नो
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कैसेट के साइड बी का ये तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दिल से।
3: तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे।
1: इसे भी गुलजार साहब ने लिखा है बड़े दिल से। और वाकई में जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो होता यही है कि हर जगह वही इंसान या तो ख्यालों में होता है या नजर आने लग जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि तू ही तू सतरंगी रे। मगर आई स्वेयर इस गाने के लिरिक्स इतने खूबसूरत है। दिल का साया हम साया, सतरंगी रे मन रंगी रे। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। कोई ख्वाब है या परछाई है, सतरंगी रे सतरंगी रे। और फिर ये लाइन आती है जब कहा जाता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इश्क पर हमारा कोई काबू भी नहीं है। और ये वो आतिश है, वो आग है, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इसी गाने के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको मिली जाऊंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वसंत कुमार पादुकोण या बाद में जिनका नाम हुआ गुरुदत्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्मों को ना सिर्फ इनोवेशन दिया बल्कि एक डायरेक्शन भी दी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट थी, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क। जिसका इतना टैलेंटेड बेटा 40 साल भी ना जी पाया हो, क्या बीती होगी उस माँ पर। गुरुदत्त जी की मदर वसंती पादुकोण ने एक इंटरव्यू में, सुनिए गुरुदत्त जी के जन्म और बचपन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: जब मेरी शादी हुई तो एक ऐसा रीजन है कहा कि तुम्हें एक साल के अंदर एक लड़का होगा जो बहुत मशहूर होगा। 1925 जुलाई 9 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत नटखटा था और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका एक स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं पागल हो जाता। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो ही वो मानता था। अब गुस्से वाला बहुत था, इम्पल्सिव था वो। मन में आया तो करेगा ही जरूर।
0: मन की करके तो वो जीत गए लेकिन अपने दिमाग से हार गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
10: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
9: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 908-222-0002 और विजिट aimseducation.edu.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Gurudat, a special charu ke saath. Purani jeans par, ungliyon mirchi.

0: गुरुदत्त साहब की फिल्मों की यूएसपी क्या होती थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली आप कोई एक चीज नहीं पिन पॉइंट कर सकते क्योंकि उनकी फिल्मों की सारी चीजें इतनी ब्रिलियंट होती थी। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी ने क्या शेयर किया था कि गानों को लेकर वो किन चीजों का खास ख्याल रखते थे।
1: उनके साथ काम करने का तरीका यही था कि वो गीत लिखते वक्त दो तीन बातें देखते थे। एक तो ये, जिस वोकैबुलरी में डायलॉग बोलता है कैरेक्टर अपने, जिन मैनर्स में वो कहने के स्टाइल उसका है, वो मैनर्स वो वोकैबुलरी हमारे गीतों में आई कि नहीं आई। एडिशनल हैसियत से उसे देखते थे कि ये गीत जो है सीन को आगे बढ़ाए। इसी वजह से गीत में दो बातें वो देखते थे, एक तो ये कि डल नहीं हो, ओपनिंग म्यूजिक लंबा नहीं हो, तो वो कभी कभी तो ऐसा करते थे डायलॉग से कट के और सीधे गीत शुरू कर दो। उनके साथ काम करने में हमको इसलिए परेशानी नहीं होती थी कि दुश्वारी वहाँ होती है जहाँ आदमी कुछ वेग होता है, क्लियर कट नहीं होता, तो ही वाज डिसाइसिव अबाउट हिम।
0: वैसे गुरुदत्त साहब की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, वो चाहे उन्होंने प्रोड्यूस की हो, डायरेक्ट की हो, गाने एक से एक बढ़कर होते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza kar.
5: T-Series present Dhamaal 4.
6: Gulabi bina chatni kaise bani.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
11: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
12: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab Mirchi kha.
15: Radio Mirchi. It's hot.
16: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: गुरुदत्त साहब अपने फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को लेकर कितने पैशनेट थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म के डिस्कशंस में किस कदर खो जाते थे, सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने क्या शेयर किया था।
1: वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका कि क्या करते हो यार मूर्ति, बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉर्ट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूछ काट दी, उड़ा दी। तो हम से किसी से रहा नहीं गया नेचुरली, तो सब हंस पड़े जोर जोर से, तो क्योंकि तुम लोग हंस रहे हो, आज रात को शूटिंग है, मैं क्या करूं। तो फिर मूर्ति साहब ने कहा गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे, आप इस तरह कीजिए, दूसरी तरफ की भी मूछ शेव कर डालिए, फिर दूसरी नकली मूछ लगानी पड़ेगी आपको। तो वो जब शॉट के बारे में, खासकर जब वो सोच रहे हो या बातें कर रहे हो, वो सब कुछ भूल जाते थे।
0: क्या ही डेडिकेशन और पैशन था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Inefficient,
5: very complex,
6: clumsy or
7: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे।

0: नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
1: गुरुदत्त स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: आपको पता है फिल्म मेकर गुरुदत्त की सिस्टर ललिता लाजमी एक जानी मानी पेंटर थी, मतलब भाई बहन दोनों ही सुपर टैलेंटेड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लाजमी जी ने क्या शेयर किया था कि कैसे गुरुदत्त साहब को शायद फिल्मों का शौक चढ़ा।
1: माय अंकल मिस्टर बेनी यूज्ड टू बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल ऑफ अस। ही यूज्ड टू गेट पासेस, फ्री पासेस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू सी 2 and 3 फिल्म्स इन अ डे, एंड आई एम श्योर गुरुदत्त मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट इवन एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ मेनी फिल्म्स। आई फील दैट working in films does change a personality, especially the kind of films that he made. Probably the long hours of working or the greater part of it, he became more and more aloof, and slowly all those picnics and those lot of fun that we had singing and all that slowly stopped. As a personality, he had a lot of disturbances. He couldn't cope up with them, probably because in those days it was not very easy to confide in another person.
0: कितना मुश्किल हो गया होगा उनके लिए अपनी mental health से deal करना, उसी के साथ साथ इतना creative होना। Hats off। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: गुरुदत्त साहब पता नहीं कितने सारे फिल्म मेकर्स के गुरु रहे हैं, मेंटर रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम पे उनके असिस्टेंट रहे राज खोसला साहब, जो बाद में चल के बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे। उन्होंने सुनी एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया कि गुरुदत्त साहब से उन्होंने क्या क्या सीखा।
1: आई एम नोन फॉर माई सॉन्ग पिक्चराइजेशन, दैट आई पिक्चराइज सॉन्ग्स वेरी वेल। एक्चुअली इट्स गुरुदत्त स्किल दैट आई लर्नड। इट टोल्ड मी दैट 80% of acting is done with the eyes of the actor. He would often get lost from all the people he loved, and then he would feel lonely. But he was a person who was lonely, but he was never alone. He was with his film. You see, it's one thing to love somebody; it's another thing to say "I love you." He was not a man who could say "I love you." He used to love, but could not express himself. That was the enigma. So the whole thing came out in the films. You couldn't read through him, but I read one thing about him. That he really was lost in filmmaking, but lost to life.
0: जिंदगी से हार गए लेकिन फिल्मों को तो अपनी जिंदगी दे दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: कई बार बहुत बुरा लगता है सोच के कि इतना टैलेंटेड, इतना बड़ा फिल्म मेकर मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था और कोई उस टाइम पे शायद उसे समझ नहीं पाया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गुरुदत्त साहब की मैं बात कर रही हूँ। अपने लाइफ के आखिरी सालों में गुरुदत्त साहब का मन जैसे सब चीजों से उखड़ गया था। जो नई फिल्मों के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए उसमें भी उनका खास दिल नहीं लग रहा था। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या शेयर किया था।
1: क्या हुआ, वेरी ऑफन यूज्ड टू टेक पिल्स एंड ये वो, उन दौरान डॉक्टर्स ने पहचाना नहीं, समझा नहीं, ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो ही स्टार्टेड बाय सेइंग दिस वेरी ऑफन, I'm not happy. I'm not. For everything he started saying, to us, nobody realized that what was going on in his mind. And later on, much, उनके भाई थे आत्माराम, उन्होंने कहा वहीदा ना हमने पहचाना ना डॉक्टर्स ने पहचाना, he was going through depression.
0: Depressive state में भी वो बंदा क्या कमाल iconic cult classic फिल्म में बना गया। Hats off. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हम इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हैं, मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viraniejewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bhari raja photo maza ka.
7: T-Series present Dhamaal 4.
8: Gulabi bina chatni kaise bani.
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: Gurudat, a special Charu ke saath. Purani jeans par. Only on Mirchi.

0: गुरुदत्त साहब की क्रिएटिव टीम के एक बहुत ही स्पेशल मेंबर थे अबरार अलवी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने गुरुदत्त साहब की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिल्म्स जैसे कि कागज के फूल, प्यासा, आर पार, इनके डायलॉग्स लिखे थे, स्क्रीन प्ले भी लिखे थे कुछ फिल्मों के। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था जब वो पहली बार 1953 में गुरुदत्त साहब से बाज़ फिल्म के सेट्स पर मिले थे।
1: बेकारी का जमाना था तो जसवंत साहब के साथ कभी कभार बाज़ के सेट्स पर चला जाता था, तो वहाँ मेरी मुलाकात गुरुदत्त जी से हुई। दोनों को काम से प्यार था, उन्हें भी हमें भी, और एक नशा सा आता था कुछ नई बातें सोच के, कुछ ये करके। ट्यूनिंग हो गई थी बहुत अच्छी उनके साथ, मिजाज मिल गए थे, टेम्परामेंट मिलते थे। गुरुदत्त बहुत इंट्रोवर्ट, लेफ्ट द वर्ल्ड वो भी था थोड़ा सा, इंट्रोवर्ट नहीं होते तो जिंदा रहे। अपना जहाँ तक उसके प्रिंसिपल्स का सवाल था और थॉट का, फिलोसफी का सवाल था, वो डिफिटिस्ट एटीट्यूड से मैं एग्री नहीं करता। फाइट द सिस्टम, कहाँ छोड़ के जाओगे? जहाँ भी जाओगे तुम्हें यही लोग मिलेंगे, यही समाज मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेंगे, यही सिस्टम मिलेगा, कहाँ जा रहे हो?
0: सोशल सिस्टम से, छोटी छोटी अनजस्ट चीजों से जो इंसान इतना अफेक्ट हो जाता हो, कितना ही सेंसिटिव और इमोशनल होगा। इन्हीं इमोशंस से शायद वो अथाह क्रिएटिविटी आती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची

0: गुरुदत्त जी की पर्सनल लाइफ के बारे में सोचो तो बहुत दुख होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनकी वाइफ गीता दत्त जी की लाइफ के बारे में सोचो तो और ज्यादा दुख होता है। गुरुदत्त जी अक्टूबर 1964 में नहीं रहे और उनके जाने के बाद जैसे गीता दत्त जी की लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहा। कुछ सालों बाद वो भी नहीं रही। गुरुदत्त जी की डेथ के कुछ टाइम बाद उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम होस्ट किया था। उसमें किस तरह अपने इमोशंस उन्होंने एक्सप्रेस किए थे उसका एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं।
1: और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन के इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। मेरे पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। इस कार्यक्रम का गीत भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है।
0: वेल, आप समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है, साहेब बीबी और गुलाम का न जाओ सैया, जो गीता दत्त जी ने ही गाया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: हमारे देश के बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने गानों का पिक्चराइजेशन गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गानों से सीखा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए जॉनी वॉकर जी ने एक बहुत ही पॉपुलर गाने से जुड़ा क्या इंसिडेंट शेयर किया था।
1: हम लोग सब गुरुदत्त जी वगैरह कलकत्ता गए थे, क्योंकि मैं कलकत्ता के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। जनाब पकड़ के मुझे लेके चले गए, तो वो जनाब एक पुचके वाले की दुकान पे हम दोनों बैठ गए और पहले तो पुचके खाए। इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो उधर से एक मालिश वाला निकला और मालिश वाले ने उस आदमी की मालिश करना शुरू कर दी और जनाब वो बड़ी स्टाइल में हाथ वाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने मुझे देखा, बोला जॉनी स्टाइल इसकी पकड़ो लेकिन आवाज तुम अपनी रखो, वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना। मैंने कहा कौन सी? अरे भाई जब तुम वो खटमल की दवा वाली, तो मैं समझ गया। हाँ तो बोले बस वो आवाज मेरे को चाहिए।
0: जी प्यासा का ये आइकॉनिक सॉन्ग पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची

0: सुन।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा का।
6: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
7: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी, गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी।
6: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार। रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ जुलाई। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो गुरुदत्त साहब ने प्रोड्यूस की लेकिन डायरेक्ट नहीं की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए बिकॉज वो नए टैलेंट को चांस देने में बिलीव करते थे और इसीलिए अपने बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि वो दूसरे डायरेक्टर्स को फिल्म डायरेक्ट करने का मौका देते थे, एक और वजह थी जो एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने शेयर की थी। सुनिए।
1: जब उन्होंने चौधरी का जान शुरू की थी तो उन्होंने उस फिल्म की डायरेक्शन सादिक साहब को दी थी, क्योंकि उन दिनों सादिक साहब की हालत, माली हालत बहुत खराब थी। यहाँ तक के बाद में पता चला कि उनका वो उससे पहले भी उनका काफी घर का खर्चा वगैरह ये किया करते थे और बहुत लोगों ने कहा कि आपने सादिक साहब को क्यों दिया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप पिछले दिनों उनकी कोई फिल्में नहीं चली, उनकी कोई मार्केट नहीं है। तो वो कहते थे गलत बात है, एक जो इंसान अच्छा है सो अच्छा है। जब वो सब्जेक्ट सोचते थे, ढूंढते थे, उनमें काफी वैरायटी हुआ करती थी, यानी कि सब पिक्चरें एक ही तरह की हो रही है।
0: तो मतलब इस बंदे की सिर्फ क्रिएटिविटी ही वास्ट नहीं थी, इसका दिल भी बहुत बड़ा था, बस अपने दिमाग अपनी जिंदगी से हार गए। हैट्स ऑफ टू गुरुदत्त साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय Gurudev.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है
10: एक ही होता है
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: गुरुदत्त साहब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क. सुनिए एक बार पोएट एंड लिरिसिस्ट कैफी आजमी साहब ने, जिन्होंने गुरुदत्त साहब की काफी फिल्मों में गाने लिखे हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या शेयर किया था.
1: गुरुदत्त बहुत बड़े टेक्नीशियन थे, बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे, और वो कैमरे के थ्रू कुछ जो बातें बड़ी आसानी से लोगों को समझा देते थे, वो इस तरह एक्सप्रेस करने में बहुत कमजोर थे. वो खुद क्या चाहते हैं ये बात उनको बताने में बहुत मुश्किल पेश आती, तो उनके साथ काम करने का मतलब ये था कि आप उनको समझ लें तभी आप काम कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है. इसीलिए मैंने तो सिर्फ गाने लिखे उनके, उससे पहले कुछ दिन साथ रहा था तो बहुत करीब हो गए थे एक दूसरे के, तो मैंने उस पर एक नज्म कही, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई. एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई.
0: रियल लाइफ में अपनी बात कह देते थे, रियल लाइफ में नहीं कह पाते थे. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

की टाइम। थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। यार जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्सडे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टेट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए, इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: ¡Gambana!
1: ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga!
2: ¡Mirchi, burga!
3: ¡Hola!
4: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने पहले इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
4: अरे यार
3: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, हेलो। हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
3: अभी अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
4: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
12: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Isolin।
13: लिस्नर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 4:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रोबैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी सी एक रील मोमेंट में मिलते हैं। कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है? कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस। और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे। और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रखकर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। डीएम मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल इस थ्रो बैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलेडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है सर तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आखो यार, एक मारूंगा।
2: ने बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल, दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
11: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
12: फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
17: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
18: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
17: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
19: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
17: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
13: दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए,
0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए, क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज होती है जहां सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
20: जय सायरा मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम। इट इज रेनिंग, माय मदर नेचर हैज बीन ब्लेस्ड एंड टुडे द यूएस मार्केट्स एज अप एज इन्वेस्टर्स लुक पास्ट ईरान। Buying a home is not easy feat these days, with residential real estate prices up across the board. Buying a home in today's market could easily mean having to take out a larger mortgage and bring more substantial down payment to the table. But still, Americans are set on buying, are expressing saving for a home this year. Friends, remember, Land Mortgage offers an array of loan products to suit your needs. Call us today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. I lately see our H-1 community is worried about their visa status, and to achieve the legal status in USA, applying for EB-5 visas, which will cost them minimum $500,000, and this money needs to be sourced. So to make your life simple, those homeowners who are in this kind of a situation and have equity on their homes can go for cash out refinance option, or they can get a second mortgage. So please call Lion Mortgage today at 732-339-3155. We'll surely be able to help you. Buying your dream home or refinance, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shanda. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार, ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव और गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार, ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पा के बारे में बात हो रही है, और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस

लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का वीआईपी मेंबर बन चुका है। जैसे कि आपने मोजा मोजा पे कभी डांस किया? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मोजा मोजा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मजा ही मजा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार, करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे क्या आपको भी ये गाना पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है, और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने हैं, तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló?
4: ¿Aló?
3: हेलो हाँ बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: कहाँ से रहा तो नहीं हो गया है
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकुलुकु
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
3: कुकुलुकु
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
10: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे
11: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा
12: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा
9: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है काम अनेक सॉफ्टवेयर एक Zoho One गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one
13: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్
14: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్ GIA సోలిటైర్స్ నెక్లెసెస్ రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్ కృష్ణా జ్యువెలర్స్ ఓక్ ట్రీ రోడ్ ఈసలిన్
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
16: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: तेरा क्या होगा कालिया
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
19: अब मिर्ची खा
9: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: श्याम सरदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम
6: ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और यार ऑफिस के डेडलाइंस बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए क्योंकि फार्म फ्रेश हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड और अगर लस्सी ना सही पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो हो, बस ऐसा सुकून ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shanda, let's do
1: not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है जब वी मेट के उस ऐतिहासिक एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने की एक मेलोडी ऐसी है जो शब्दों के बिना भी ना एक कहानी सुना देती है। जी हाँ, बात हो रही है जब वी मेट के आओगे जब तुम गाने की। इतना ब्यूटिफुल सा गाना है ये, और ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं लगता बल्कि एक दुआ जैसा लगता है। उस्ताद राशिद खान की क्लासिकल डेप्थ ने इस ट्रैक को प्योर सिनेमा का हार्टबीट बना दिया। वैसे शूटिंग के दौरान जब करीना बारिश में खड़ी थी तब क्रू बोलती थी कि यार एक मोमेंट ऐसा आया था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ हो गया था, पर तब हवा की आवाज मेलोडी बन गई थी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी, और उसी के दौरान उन्होंने शूटिंग की थी। तभी तो यार लोग कहते हैं कि ये गाना किसी के वापस आने का सबसे खूबसूरत तरीका है, किसी को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो चलिए, अगर आपके भी अंगना में फूल खिलते हैं जब कोई खास आपके अंगना में आता है, तो आपके लिए ये अगला गाना आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो जब वी मेट का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आपके लिए जब वी मेट का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo maza ka.
5: T-Series present Dhamaal 4.
6: Gulabi bina chutni kaise bani? Gulabi bina chutni kaise bani?
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

शांति में होती है, उनके हाथ में गरम कोका होता है, तब बैकग्राउंड में वो यही गाना सुनती है तुमसे ही, क्योंकि यार उसमें एक लाइन है कि मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही, और वो अपने हस्बैंड को ये जो लाइन है वो डेडिकेट करना चाहती है। बड़ा ही फिल्मी मोमेंट है। जी हाँ प्रिया जी। और दोस्तों वैसे एक बहुत ही खास बात इस गाने की, मतलब यार जब मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना गाया गया था, एक हल्की सी हंसी जो उन्होंने लाई थी इस गाने में, जैसे कि कोई बहुत ही शांति से किसी का नाम ले रहा हो। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोहित चौहान जी माइक से थोड़ा दूर हो गए थे ताकि वॉइस में वॉकिंग इन द रेन वाली फीलिंग आ जाए, और शायद इसीलिए ये गाना लगता है कि यार इवन दो तुम तन्हा कहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो अपना साथ ही चल रहा है। तो आप भी बताइए कि आपको ये गाना पसंद है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार उस एल्बम का हर एक गाना बजाएंगे आपके लिए, और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मजे की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो, या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस कर रहा है, कुरियर कर दूं, आप आगे ले लेंगे इसको।
1: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी, करोड़ों के हिसाब से वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीक में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Condition

की टाइम। दोस्तों कभी कभी लगता है कि पहले हम गाने सुनते कम थे, उसके साथ ज्यादा रहते थे। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज अचानक कैसेट का वो जमाना याद आ गया। जी हाँ, जब फेवरेट गाना सुनने के लिए ना पूरा साइड ए पेशेंटली सुनना पड़ता था, फिर फास्ट फॉरवर्ड करना भी एक आर्ट होता था, और उस वेट का भी एक अलग ही मजा होता था। और मजे की बात तो ये है कि फेवरेट गाने का इंतजार करते करते बीच के जितने भी गाने थे ना वो भी हमें याद हो जाते थे, क्योंकि एक कैसेट हम खरीदते थे और उसके हर ट्रैक की अलग ही अपनी पहचान बन जाती थी। और वैसे तो आज प्लेलिस्ट में हजारों गाने हैं, रील्स में 20 सेकेंड्स के क्लिप्स हैं, लेकिन तब एक कैसेट महीनों तक हमारे साथ चलती थी। कार में वही, घर में वही, वॉकमैन में वही। और शायद इसीलिए आज भी जब भी कोई पुराना गाना बजता है ना, उसके सिर्फ लिरिक्स याद नहीं आते, वो पूरा दौर याद आ जाता है। स्पेशली वो दौर जब हम कैसेट की जब रील बाहर निकलती थी तो पेंसिल से उसे ठीक करते थे। तो चलिए आज रेडियो पर भी वही पुराना एहसास वापस लाते हैं। इस गाने को बिल्कुल कैसेट के जमाने की तरह बिना स्किप किए पूरा इंजॉय कीजिए, और मुझे जरूर बताइए कि आपने जिंदगी की पहली कैसेट कौन से एल्बम की खरीदी थी। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मैंने जिस एल्बम की खरीदी थी उसी का गाना आपके लिए आगे बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: गुलाबी साड़ी अनि लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
10: टी सीरीज प्रेजेंट द माल 4।
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
10: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 7:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's go not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर अस। वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर अस स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।